0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Marketing's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
2: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
1: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
2: उम्रा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
1: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
2: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
3: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
2: जब चाहे कॉल मिलाए
1: 01274781168
3: मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
3: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
4: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
4: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
4: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
2: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन खाए
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
2: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
6: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
2: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627
7: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: रोड ब्रफर्ड
1: जब चाहे कॉल मिलाएं
2: 01274781168
0: मीरपुर ट्रेवल्स
3: मीरपुर नवे डेमो।
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
0: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
1: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
4: safewayrider.co.uk।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
11: or Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल
7: 91 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी

0: चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
2: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
5: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: मैनिंगम सुपर स्टोर,
6: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरा।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Ya Allah,
3: jo shakhs rozana 1000 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah uske dil se tamam shak o shubhat dur ho jayenge aur azm o yaqeen ki quwwat naseeb hogi. Jo la ilaaj mareez ba kasrat is isme mubarak ka wird rakhe aur iske baad shifa ki dua mange, usko shifae kamil naseeb hogi.
2: Ya rahman,
3: behad rehm karne wala, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, uske dil se inshaallah har qisam ki sakhti aur ghaflat dur ho jayegi aur iska hafza qawi ho jayega.
2: Ya rahim,
3: eh bada meherban, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, tamam dunyavi aafaton se inshaallah mehfooz rahega aur tamam makhlooq us par meherban ho jayegi.
2: Ya malik,
3: ae haqeeqi badshah, jo shakhs rozana subah ki namaz ke baad kasrat se is isme mubarak ko padhega, Allah taala use ghani farma denge.
2: Ya quddus,
3: eh buraiyon se paak zaat, jo shakhs is isme mubarak ka wird rozana 100 martaba karta rahega, use Allah taala tamam tafarruqat se nijat denge.
2: Ya salam,
3: eh be-ebzad, jo shakhs kasrat se is isme mubarak ko padhta rahega, inshaallah tamam aafaton se mehfooz rahega. Jo shakhs 160 martaba is isme mubarak ko padh kar bimar par dam karega, Allah taala use sehat o shifa ata farmayenge.
2: Ya mu'min,
3: ae amn o iman dene wale, jo shakhs kisi khauf ke waqt 631 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah har tarah ke khauf aur nuksan se mehfooz rahega.
2: Ya muhaimin,
3: ae nigehban, jo shakhs ghusl karke 2 rakat namaz padhe aur sidq e dil se 100 martaba is isme mubarak ko padhega, to Allah taala uska zahir o batin paak farma denge. Aur jo shakhs 115 martaba padhega, to inshaallah poshida cheezon par matla ho.
2: Ya aziz,
3: ae sab par ghalib, jo shakhs is isme mubarak ko namaz e fajar ke baad 41 martaba padhta rahe, wo inshaallah kisi ka mohtaj na ho aur zillat ke baad izzat paaye.
2: Ya jabbar,
3: ae sabse zabardast, jo shakhs is isme mubarak ka wird باقاعدگی سے کرتا رہے گا, اسے کوئی اس کی مرضی کے خلاف किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना उस शख्स को तशद्दुद सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े।
2: या मुतकब्बिर
3: ऐ बड़ाई और बुजुर्गी वाला, जो शख्स कसरत से इस इस्मे मुबारक का विद रखेगा अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे, और अगर हर काम की इब्तिदा में इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाल्लाह उसमें कामयाब होगा।
2: या खालिक
3: ऐ पैदा करने वाला, जो शख्स सात रोज तक मुतवातिर 100 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा इंशाल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा इस इस्मे मुबारक को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और चेहरा मुनव्वर रहता है।
2: या बारी
3: ऐ जान डालने वाला, अगर बांझ औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो उसे इंशाल्लाह औलादे नरीना नसीब हो।
2: या मुसव्विर
3: ऐ मखलूकात की सूरत गरी करने वाला, अगर बे औलाद औरत इस इस्मे मुबारक पर यूं अमल करे के 7 रोजे रखे और हर रोज इफ्तार के वक्त इन 3 नामों को यानी या खालिक या बारी या मुसव्विर 21 मर्तबा पढ़कर 1 गिलास पानी पर दम करे और इस पानी से इफ्तार करे तो इंशाल्लाह उसे औलाद हासिल होगी।
2: या गफ्फार
3: ऐ दरगुजर और पर्दा पोशी करने वाला, इस इस्मे मुबारक का बाकायदगी से विर्द करने से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल होती है।
2: या क़हार
3: ऐ सबको अपने काबू में रखने वाला, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से दूर हो जाएगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी।
2: या वहाब
3: ऐ सब कुछ अता करने वाला, जो शख्स फिक्रो फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से उसको हैरत अंगेज तरीके पर निजात देंगे।
2: या
3: ऐ बहुत बड़ा रोजी देने वाला, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द करता रहे परवरदिगारे आलम उसकी किफालत अपने जिम्मे ले लेता है।
2: या फत्ताह
3: ऐ बहुत बड़ा मुश्किल कुशा, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द बाकायदगी से करता रहेगा उसका दिल खोल दिया जाएगा और उसे फतह नसीब होगी। ऐ बहुत वसी इल्म वाला, जो शख्स कसरत से इस इस्मे मुबारक का विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह इल्म व मारिफत के दरवाजे खोल देंगे।
2: या काबिग,
3: ऐ रोजी तंग करने वाला, जो शख्स रोटी के चार लुकमों पर इस इस्म को लिखकर 40 दिन तक खाएगा, भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से महफूज रहेगा।
2: या बासिक,
3: ऐ रोजी फराह करने वाला, जो शख्स नमाज़े चाश्त के बाद आसमान की जानिब हाथ उठाकर रोजाना 10 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा, अल्लाह ताला उसे गनी बना देंगे और कभी किसी का मोहताज ना होगा।
2: या खौफिग,
3: ऐ पस कर देने वाला, जो शख्स रोजाना 500 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें इंशाअल्लाह पूरी और मुश्किलात दूर फरमा देंगे। जो शख्स 3 रोजे रखे और चौथे रोज एक जगह बैठकर 70 बार इस इस्मे मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतेह याब होगा।
2: या राफिउन,
3: ऐ बुलंद कर देने वाला, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का दिन और रात में 101 मर्तबा विर्द करेगा।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
0: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी,
8: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
7: सस्ते फ्लाइट टिकट्स, वीजा सर्विसेज,
8: उम्रा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
7: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
8: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
9: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: जब चाहे कॉल मिलाए
7: 01274781168।
9: मीरपुर ट्रेवल्स।
10: मीरपुर
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह,
9: चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट

0: उठिया और हार
1: जो दुल्हन करे सिंगार
0: आज ही मामू काके की दुकान
1: खालिस सोने की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
0: आपकी शान
1: हमारी आन
0: क्वालिटी की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड PD95ER 01274491442
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
0: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
0: 01274201679 UK
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
2: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
4: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229627222
3: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन खाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD9
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान

0: Audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

المجرمين ولا تحزن عليهم.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK.
6: I'm Safe Rider.
8: DSA audit approved instructors, automatic and manual cars, online theory classes ki sahulat. Aaj hi visit kijiye.
6: 33 Wetley Lane, Bradford 01274201679.

0: 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
1: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनिंगो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब रणवीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहें कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो के पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ
6: 2743065 67 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
12: फर्नीचर तो आप

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रैडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बिल्कुल सामईन इकराम, आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान, आपकी प्रेजेंटर और आपकी खैर खा ये कहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा अख्तर, ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर एक दफा फिर हाजिर हैं, दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए खैरख्वाही की सुबह सुबह। ये हमारे लिए सुबह सुबह होती है जब हम काम काज शुरू करते हैं, तो दिल की गहराइयों से आप सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, उमंगें, उम्मीदें, और उम्मीद करती हूँ आप सबका जो वीकेंड है, पिछला वीक, वो बहुत अच्छा गुजरा होगा।

जी मौजूदा सामईन इकराम, ब्राफोडेशन रेडियो 1413 AM पर आपकी मेज़बान आयशा यास्मीन और आयशा अख्तर और शहजादी बतूल। आज बहुत सी वजाहतें भी होनी है और बहुत से खूबसूरत दिलचस्प पैकेजेस जो हैं और जो हम मेरे फॉलोअर्स मेरे लिसनर्स उन्होंने बहुत गुड न्यूज़ जो हैं वो आपके लिए छोड़ी हैं, वो गुड न्यूज़ आप तक पहुंचानी है। आपका हमारा सफ़र आज का जो है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बेहतरीन सफ़र रहे जी। और कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी माजरत इसलिए कि थोड़ा सा लेट कुछ हो गया और मामलात कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, जितना भी हम जल्दी आए। लेकिन वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ना वहाँ पे अगर मैंने सच बता दिया तो देखिए कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब तक हमें खुशबुआत मोतर मोतर सुहानी सुहानी नहीं आएंगी। तो कुछ परफ्यूम्स टेस्ट कर रही थी, इतने ज़बरदस्त, मैंने कहा प्रोग्राम के दौरान आपकी मेरी खुशबुएं आप तक पहुंचे, स्प्रेड हो, जब खुद को खुशबू आ रही हो, माहौल बड़ा मोतर मोतर बीनी बीनी खुशबू मेरे स्टूडियो में फैली हुई हो और वो खुद जितना भी हम मॉइस्चराइजिंग फ्रेग्रेंस्ड मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो यूज़ कर लें, क्रीम्स, लेकिन जो परफ्यूम है, इत्र है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। सुबह सुबह बहुत खुश हो जाए, क्योंकि खुशबू जो होती है फैलाने से बहुत महकती है। मोतर जहन के साथ आप मेरा प्रोग्राम सुनेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज आपको इतने सरप्राइजेज गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं और आप बहुत खुश होंगे। इससे पहले हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, हमारी वेबसाइट broadfoundationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। ये मेरा थोड़ा सा टेक्निकल इधर जो है इशू तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला है कि बैकग्राउंड जो है अभी बैकग्राउंड में कह रहा है कि वो आप अपनी सुहानी सुहानी बीनी बीनी खुशबू के साथ प्यारी प्यारी बातें जो है वो करती रहें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा सिस्टम में आने में टाइम लेगा। तो अदरवाइज कहते हैं आयशा अख्तर शुरू होती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी रेयर लोग जो है ना, बहुत कम वो ऐसा कहते हैं, लेकिन जितना भी देखे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सुबह सुबह मैं क्यों झूठ बोलूंगी। कहते हैं आपने देखे अगर 15 मिनट भी बात की है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें इतना लुत्फ आया, इतना लुत्फ आया, इसलिए आयशा अख्तर जो है वो बोलती हैं, खूबसूरत बोलती हैं आपसे, क्योंकि आप हमारे खूबसूरत लिसनर्स हैं। जब कदर करने वाले, इज्जत करने वाले और बहुत ज़्यादा तकरीम देने वाले, मेरे सुनने वाले, चाहने वाले मेरे प्रोग्राम को सराह रहे हों, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम का पता नहीं चलता। और इस वक्त तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ है कि मेरा अभी बैकग्राउंड जो है वो सिस्टम पे नहीं आ रहा, तो इसलिए आपसे ढेर सारी बातें और ढेर सारी बातों में क्लैरिफिकेशन और एक माजरत, जो फ्राइडे का जो मैंने जितने मेरे न्यू कॉन्टेंट्स, जितने मेरे न्यू कॉन्टैक्ट्स थे और उनको मैंने एक होप दी थी कि वो मेरा ज़रूर प्रोग्राम सुने, आई एम सॉरी, उनके साथ मैं अपोलॉजी करती हूँ अपनी रेडियो की टीम को, कि अगर मैंने उनको टाइम के ऊपर जो है वो एक संदेशा जो है वो ना दे सकी। और इन सारे मसाइल को काबू पाते हुए हमें अपने काम की जगह से एटलीस्ट काम की जगह पे बहुत जो है अलर्ट और ऑनेस्ट और फेयर रहना पड़ता है। हमेशा की तरह काबिले एहतराम मेरी रेडियो की टीम, जो हमेशा मेरे साथ इतनी कोऑपरेटिव है और एक दुनिया इनकी तारीफ़ कर रही है, अल्लाह करीम की डेरों डेर में शुक्रगुजार कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अल्लाह ताला ने भेजा है कि जो मैं कोई इनकी खुशामद नहीं करती। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी इन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम ऐसे बोलो, ना ही मैंने इनसे कभी पूछा है, ना ही मुझे परमिशन की ज़रूरत है। बात अच्छी वही होती है जो आपके दिल से निकले, दिल से निकले, दिल से निकले, क्या ख्याल है। और हमेशा आप सबको मैं
अपनी दुआओं में भी आप भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कोशिश होती है कि हमेशा की तरह एक दिलचस्प एंटरटेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ इंफॉर्मेटिव और हालात हाजरा से जुड़ा हुआ और आज जुड़ा हुआ प्रोग्राम हो. और आज इंशाल्लाह आप इतना खुश होंगे, इतने बिग बिग सरप्राइजेज और इतने नाइस सरप्राइजेज हैं जो धीरे धीरे मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगी.

0: जी मोजे सामीन इकराम, मैं ब्राफरेशन रेडियो 1430 AM पर आयशा अख्तर के संग आज का एक दिलचस्प और खूबसूरत प्रोग्राम सुबह 9 में आप इंशाल्लाह समात फरमाने वाले हैं। अभी कहीं नहीं जाना है, हमारी वेबसाइट brafrationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जी बिल्कुल, आपकी आयशा अख्तर, आपकी शहजादी बतूल का मैंने इसलिए, ये शहजादी बतूल साहिबा यहाँ पे बैठी है और इनको एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी कली और मासूम सी बच्ची ने इंस्पायर हुई, वो मेरा रेडियो का उसने देखा, पीछे मेरे जो वीडियोस हैं मेरी टिकटॉक के ऊपर, वो आईडी उसने जब देखा तो उसकी जानी पहचानी और उसकी मनपसंद और उसकी फेवरेट टीचर निकली है और उसने हमें अपने बिजनेस के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ऑफर दी है, बहुत ही खूबसूरत ऑफर, वो आपके साथ डिस्क्लोज होने वाली है। आपने कहीं नहीं जाना, अभी मेरी घड़ी के ऊपर नजर है, मुंतजिर है हमारी एक छोटी सी ब्रेक और छोटी सी ब्रेक के बाद वो डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज उस मासूम बच्ची के हवाले से कि उसने न सिर्फ ट्रिब्यूट किया है अपनी एक फेवरेट टीचर को भी, और उसने जब देखा कि प्रेजेंटर है ये ब्राफरेशन रेडियो 1430 AM की, तो उसने फिर मुझे अपने बिजनेस के लिए, जो कि अल्लाह और उसे सलामत रखे उस मासूम बच्ची को और सबको, हम सबको सलामत रखे, उसने फिर एडवर्ट भी इंशाल्लाह उसकी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, स्पॉन्सर आज जो है प्रोग्राम में उसका जो है स्पेशल आप सबके लिए ग्रेट न्यूज के साथ स्पॉन्सर जो है वो शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे चाहिए ऐसे सिंगर्स जो हैं, जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत गाना गाते हैं, खूबसूरत मैंने कहा है, खौफसूरत नहीं कहा, प्लीज इस पे बहुत तवज्जो करनी है, मैं खुद भी खौफसूरत नहीं पे पेश करूंगी कोई भी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं खुद भी बहुत डिसेंट सा एक बहुत ही उस वक्त सॉन्ग गाऊंगी, सॉन्ग जो है आपके सामने लाऊंगी जब आप खुद बड़े सिंगर बन के मेरे सामने आएंगे। जी जनाब, अभी कॉल्स भी जो हैं वो बहाल कर दी जाती हैं और मेरे जितने भी न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी मेरे न्यू फॉलोअर्स और मैं कहूँगी कि लिसनर्स हैं, और मेरा कार्ड भी उन तक पहुँचा है और मैंने पहुँचाया है, उनके भी इंशाल्लाह ताला बिजनेसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स हमारा वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये सारा क्रेडिट जो है मेरी रेडियो टीम को जाती है कि जो अनथक मेहनतों और काविशों से ये सारा सेटअप किया हुआ है और मुझे मौका देते हैं कि मैं आप सबके साथ फ्रेंडली रहूं और आप सबकी जितनी भी वो जो बिजनेसेस हैं उनको भी, उनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज भी करूँ, और इसके अलावा ग्रेट न्यूज जो है वो और हमारी मुंतजिर है, मिलते हैं इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1430 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: ब्रैडफोर्ड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी,
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स, वीजा सर्विसेज,
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168।
7: मीरपुर ट्रेवल्स।
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
0: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
6: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, Bradford, BD95ER, 01274914442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी मोहतरम सामईन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर आयशा अख्तर आपके संग। और सुबह 9 में आज बहुत ही, आपको मैंने पहले भी बताया, खूबसूरत से जो पैकेजेस हैं और गुड न्यूज़ हैं आपके लिए मुंतजिर हैं आपकी, तो हमारी वेबसाइट brafarationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। बहुत ही एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो भी आपके लिए मैंने होल्ड ऑन है, वो किया हुआ है होल्ड। तो एक बात ये बता दूं कि मैं ये बात एक छोटी सी, जिसे कहते हैं कि वजाहत, एक छोटी सी डिटेल जिसे कहते हैं, मैं आपके पास ऑन करना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर मेरी जो टिकटॉक आईडी के ऊपर मेरा रेडियो का लोगो जो है वो इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, तो मेरा मेन पर्पस जो है वो चूंकि इस रेडियो को प्रमोट करना है और मुझे वहाँ से जो स्पॉन्सर्स मिले हैं, जो जितने भी मेरी फॉलोअर्स हैं, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया एक मासूम सी बच्ची ने अपने बिजनेस के लिए जो है वो मुझे स्पॉन्सर किया है, उसका भी जो जितना स्पॉन्सर का हिस्सा है वो आपके सामने पेश किया जाएगा और बिजनेस भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा मुझे अल्लाह के फजलो करम से आप सबका इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वहाँ पे, तो वो कंफ्यूजन हो गई कि आप आयशा अख्तर हैं और उधर शहजादी बतूल, तो जी जनाब ऐसा ही है, क्योंकि सम टाइम हमें नाम जो है वो जो हम रखना चाहते हैं वो दूसरे मीडिया पे मिलता नहीं है, तो हम जो नाम है वो उधर मैंने बहुत तलाश किया, यही सेम नाम तो टिकटॉक पर मुझे जो मिला अवेलेबल हुआ तो वो कर दिया। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल दिखे, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, कोई मुझे शाज बुलाती हैं, शाजिया, कोई ताइबा, कोई क्या कहती है आपके ऊपर ये सूट करता है, मुझे सारे नाम बहुत ब्यूटीफुल। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी इज्जत अफजाइयों का बहुत शुक्रिया और मेरी रेडियो टीम का बहुत शुक्रिया कि जो इतना अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव है मेरे साथ, और मेरे और दिल को जब सुकून होता है अच्छी जगह पे बैठे होते हैं तो डेरो डेर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ इनको दिली तौर पे दुआएं दिए जाते हैं। हम जिस जगह पे अल्लाह ताला ने अच्छी पे बिठाया, ये ज़रूरी नहीं कि मैं मुंह से जो है वो मेंशन करूं, मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं मेरी रेडियो टीम के लिए, अल्लाह ताला ऐसे ही इन्हें सरसब्ज़ो शादाब रखे, आप सबको आबाद रखे कि जो इतना इज्जत अफजाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि जी हमने आपका प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा था, तो मुझे बाकायदा बताया जाता है कि ये यहाँ से आपने ऐसे गुफ्तगू की तो ये गुफ्तगू हमें बड़ी बेहतरीन लगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी जितनी भी फीडबैक होती है वो मैं अभी बहुत से दो तीन ऐसे पहलू हैं जो आप कहेंगे कि इनका तज़किरा करना रेडियो पे बहुत ज़रूरी था, वो भी साथ रहेगा। बहुत कुछ इंशाल्लाह यूं ही ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर ऐसे ही आयशा अख्तर के संग प्रोग्राम सुनते रहें, और मेरे जितने भी मौजूद सामईन इकराम ने मेरी रेडियो की इस तरह से ये वीडियो क्लिप्स देख के मुझे टिकटॉक से जो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स भेजे, और इंशाल्लाह सून उनकी एडवर्ट्स जो हैं बड़ी बेहतरीन अंदाज में आप सबके सामने पेश की जाएंगी, और आप सब यूं ही मेरे साथ कोऑपरेटिव रहें, आप सबका बहुत शुक्रिया, दिली दुआएं हैं। आप बाज़ौक लोगों के लिए, बड़े बाज़ौक लोग जो हैं वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। हमारी वेबसाइट brafarationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। बहुत ही खूबसूरत सा एक कलाम से आगाज करते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये कलाम जो है इसमें मैंने अली ज़फ़र जो है उसकी आवाज़ देखी, फिर मैंने हदीका कियानी की आवाज़ देखी, इसमें इसी कलाम में मैंने आबिदा परवीन की देखी, और आपको पता है कि अगर

नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि मुझे आबिदा परवीन भी मेरी फेवरेट है, लेकिन हदीका ज्ञानी जो है वो तो मेरी फेवरेट इस लिहाज से भी है, अगर मैंने बहुत बड़ा एक आपके सामने सच बोल दिया तो फिर आप फौरी तौर पे वो सच तलाश कर लेंगे, इसलिए मैं वो सच अभी नहीं बताऊंगी, कभी जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी कि क्यों मुझे हदीका ज्ञानी से इतनी उनसियत है। राइट, तो इस वक्त ये जो है नाम, ये उस्ताद हैं, और उस्ताद का ये कलाम जो है आप सुनेंगे, महजूज होंगे, और शुरुआत जो है अभी मौसीकी की इसी कलाम से करते हैं। और एक ऐसा मंजा हुआ उस्ताद मौसीकी की दुनिया का नाम, मैं जरा थोड़ा सा सरप्राइज, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वो बात ही क्या हुई कि अगर मैं उनका नाम बता दूंगी तो मैं थोड़ी सी वजाहत ये कि ये फोन की कॉल्स जो हैं, मुझे कुछ इसमें भी टेक्निकल कुछ फोन में लग रहा है खराबी थोड़ी सी, वो भी मैं इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। फिर जरूर कॉल्स बनाइएगा और लाइव आइए, और खूबसूरत आप अपने भी सॉन्ग्स मन पसंदीदा जो है मन पसंद जरूर हमें सुनाइए। तो ये खूबसूरत ये कलाम जो है आपकी नजर, मेरे बहुत ही खूबसूरत व्यूअर्स, लिसनर्स और फॉलोअर्स, और जो इतनी ऑडियंस जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर खित्ते और स्पेशली बैक होम कंट्री पाकिस्तान से जो है मुझे सुन रहे हैं, उनकी नज़र करती हूँ। ये उस्ताद जो है यही कलाम खूबसूरत इसको गा सकता था, आइए सुनते हैं।

ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਖਿੜਿਆ ਪਾ।

0: Radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: जी मौजूद सामीन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM आपका मनपसंद रेडियो, और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं और जितनी भी आपकी हमारे पास एक आप हमसे जो करते फरमाइशें करते हैं वो उनका खैर मकदम करने वाला। और मैं कहूँगी कि इस वक्त दुनिया पर छाने वाला अल्लाह के फजल करम से रेडियो जो है ब्रेफर्ड एशियन रेडियो 1413 AM अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारी वेबसाइट ब्रेफर्ड एशियन रेडियो .co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआ है कि इस चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी, और हमारी रेडियो टीम को और आपको और हम सबको अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियां दे, अपनी खैरो अमान हिफ्जो अमान में रखे हमेशा, आमीन। अल्लाह करीम हम पे अपनी रहमतों का यूं ही साया बनाए रखे। सामईन इकराम, इस वक्त बात जो है वो चूंकि वो मैंने जो अभी डिस्क्लोज किया था कि हमें स्पॉन्सर जो मिला है उस मासूम बच्ची के हवाले से, तो वो बिजनेस जो है उसकी एडवर्ट अभी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह बाकी भी। तो ये जो स्पेशल एक मैंने ऑर्गेनाइज किया ये वाला आज का प्रोग्राम, जी बिल्कुल हमारी कॉल्स जो हैं बिल्कुल बहाल हैं, फोन का सेट जो है आपका मुंतजिर है, और अकॉर्डिंगली दिस स्पॉन्सरशिप जो है ये जो स्पॉन्सर हमें एक बिजनेस की तरफ से मिला है, चूंकि अभी शुरुआत है और हमने एक स्पॉन्सर उनसे लिया है जिसमें जो सरप्राइज गिफ्ट के साथ उनका नाम और बिजनेस भी उस वक्त तक मार्केट में जो है वो आ जाएगा। तो उससे पहले आप सबको एक ट्रीट करने के लिए और एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है उस बच्ची ने, तो वो आप कॉल्स बहाल हैं, आपकी लाइव कॉल ली जाएगी। आप में से देखें बारिश का जो पहला कतरा है वो हमेशा तो आयशा अख्तर ही बनती हैं, लेकिन इस वक्त मैंने अपने सारे वो कहते हैं ना जुमला हकूक जो हैं वो बचा के रखे हुए हैं। अरे भाई नहीं, आपका राइट है भाई, आपके लिए ये आया है स्पॉन्सर और आपने मैदान में आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो आपका सरप्राइज और हो सकता है वो कितना एक्सपेंसिव प्रेशियस गिफ्ट हो, और स्पेशली फीमेल के हवाले से तो आपको पता है फ्रेग्रेंसेस और और क्या कहते हैं तरह तरह के मेकअप कॉस्मेटिक्स दिस एंड दैट, जो डिजाइनर इट कुड बी अ डिजाइनर सूट, इट कुड बी अ रियली वंडरफुल अमेजिंग मेकअप मेकअप किट, एनीथिंग हो सकती है। मे बी कोई हाई हील जो होती है हमारी ख्वातीन का एक वीक पॉइंट होता है, बाकी के जो होते हैं आई लैशेज और दिस एंड दैट, वो सारा कुछ आपको खुद आप उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं मैच। तो आपसे फिर मैं एक दफ़ा कह रही हूँ कि आप आएं और अपने फ़न का मुजाहरा करें, और जितने भी मेरे मौजूद सामईन इकराम इस वक्त सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो ये मैंने जितने भी आज ऑर्गेनाइज किए हैं एक सूफी कलाम जो हार्ट टचिंग है और हमारी रूह को तस्कीन देने के साथ साथ के इश्के हकीकी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, और जिनके ऊपर इश्के मजाजी की भी कुछ चोट पड़ी है, वो कहते जब तक इश्के मजाजी की चोट ना पड़े तो इंसान इश्के हकीकी को नहीं समझ सकता, अपना अपना नज़रिया है। जबकि मैं कहती हूँ जो मुस्तगरिक होते हैं इश्के हकीकी में, तो वो फिर उनको हल्की सी ज़रब भी इश्के मजाजी की तरफ से लगती है तो वो दिल शायद कभी भी संभल नहीं पाता। वो कहता है दिल के बस मेरा इश्क यही है। तो आज बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं, और बहुत से लोगों ने ये जो औलिया अल्लाह है औलिया कराम है वहाँ से जाके मुरादें पाई हैं। अपने अपने नज़रियात है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, ना ही मेरा किसी ख़ास तबका ग्रोह से ताल्लुक़ है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो है हम सबको जो बिखरे हुए हैं और जो जो सफ़र कर रहे हैं बड़ी समटाइम्स क्रिटिकल सिचुएशन का माशरती माहौल जो है उसने घेरा हुआ है परेशानियों में, कुछ उलझने हैं सुलझने हैं, और अगर कुछ नहीं भी ऐसी मामलात सिचुएशन से वास्ता, फिर भी
1: कभी कभी दिल चाहता है कि किसी ऐसी सूफी हस्ती के चले जाएं, तखयलाती दुनिया में ही ऐसा कदम रख ले वहाँ पे जाके, जहाँ सुकून की वादियाँ हों, जहाँ लोगों की मुरादें झोलियाँ जो हैं वो भरी जा रही हैं। जी, ये भी आप कह सकते हैं कि ये हमारे स्पॉन्सर का हिस्सा है। ख़ास तौर पे कुछ मामलात लगे होते हैं और बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, और अपनी एडवर्ट्स को मैं ये कलाम लगाती हूँ। और फिर एक दफ़ा वंस अगेन कि जितना भी अगर मेरी टिकटॉक आईडी पे रेडियो का कहीं भी आपको साइन मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड नज़र आता है, वो पूरे का पूरा हक मेरी रेडियो टीम को जाता है। मेरा इसमें कोई भी कमाल नहीं है, अल्लाह का फजलो करम और इस टीम की दिन रात मेहनतें, कोशिशें, काविशें, जो डायरेक्टर हैं इस टीम के और मैनेजर हैं और इन सबको जाता है, और अल्लाह का करम के मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा कि जो मेरे लिए बाइस सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि ये कलाम जो है इससे बड़े बड़े लोग जो है फैज़ पाया उस हस्ती से, तो उस हस्ती के लिए, और ये जो एक हमारी लेजेंडरी जिसे कहते हैं गुलुकारा है, उनको भी आप सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। और इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हमारे प्रोग्राम को भी चार चांद लगाएगी ये लेजेंडरी की आवाज़ और कलाम भी, और जिसने ये हमें स्पॉन्सर किया है, उम्मीद करती हूँ कि वो बच्ची जो है वो भी इससे मुस्तफीज़ भी होगी इंशाल्लाह ताला। उन उसकी और हम सब की अल्लाह ताला मुसीबतें, परेशानियाँ, आजमाइशें ख़त्म करे, हम सब के ऊपर अल्लाह ताला बहुत खास करम करे, बहुत अपनी रहमत के साए में रखे। जी, सुनते हैं, उम्मीद करती हूँ ये कलाम जो है आज महफिल की जीनत जरूर बनेगा। आइए सुनते हैं।

जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, आपका मनपसंद चैनल, आपका मनपसंद रेडियो ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM, जिस पर आपको बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम्स जो हैं आपकी पसंद के सुनवाए जाते हैं और हमेशा आपकी फरमाइश को भी खैर मकदम किया जाता है और आपके लिए एक से एक बढ़कर प्रोग्राम पेश करना हमारी अव्वलीन जिसे कहते हैं फौकियत होती है। सामईन इकराम, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। वंस अगेन आपको मैं कह दूं कि ये जो प्रोग्राम आज का बिलखसूस, हमारे बहुत से ऐसे नए स्पॉन्सर्स आए हैं जिनकी फरमाइश भी है और जिनकी चाहत है कि आज बहुत से सूफ़ी कलाम जो हैं वो पेश किए जाएं और इंशाल्लाह सून हमें अल्लाह ज़्यादा जितनी भी बरकत ऑब्वियसली हमारी रेडियो टीम को दे तो और इस तरह से बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह अगर टिकटॉक के ज़रिए से अल्लाह ताला ऐसे ज़ाहिर बात है कि वसाइल हमारे लिए क्रिएट कर रहा है तो बहुत अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती हूँ। और आप सब का अगर कोई और फेवरेट आप गीत और अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 जो है उस पर मुझसे रबता का करके आप अपनी फरमाइश का इजहार कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे प्रॉमिस भी था कि एक खूबसूरत सी हमने सूफी महफिल का एहतमाम करना है और यकीन करें कि अगर एक दुनिया जो है इश्को मस्ती में झूम रही है तो एक कैफियत सी बन गई है, एक माहौल सा बन गया है और आपकी डीप खामोशी जो है हमेशा की तरह आयशा अख्तर समझ जाती है अगर महफिल के ऊपर इतना सुरूर सा छाया हुआ है। इससे पहले कि ब्रेक हमें फिर पकड़ ले तो ब्रेक पर जाने से पहले ये खूबसूरत सा ये शाजिया खुश की आवाज़ में ये एक खूबसूरत सा सूफ़ी कलाम कह लें, सूफ़ी गीत कह लें और एक गीत कह लें इसे मनपसंद, तो आइए सुनते हैं जी

0: being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
3: अब रणवीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
2: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
3: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
2: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
3: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
4: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
3: जब चाहे कॉल मिलाएं
2: 01274781168
4: मीरपुर ट्रेवल्स
5: मीरपुर
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
3: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
2: जो के पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644
4: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
3: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
6: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
6: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
3: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन खाए
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
3: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
3: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
3: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
3: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
6: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
3: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
6: UK
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
7: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
8: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627
8: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी मज़े सामीन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर इस वक्त जो कैफियत तारी है आप सबके ऊपर, वो एक माहौल बना हुआ, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम सब जो हैं इसी कैफियत और माहौल में रहें, बड़ा निखरा निखरा, उजला उजला, और ऐसा एक मैं कहूँगी कि मरहला कि जहाँ पे हम अपनी टेंशन्स जो हैं वो बहुत रिलीज़ कर रहे होते हैं, और जो एक किस्म का सुकून और इत्मीनान जो है वो जज़्ब कर रहे होते हैं अपने अंदर। अपने अपने मन की बात है और अपनी अपनी सोच की बात है, हर कोई अपने एंगल से और जाविये से इस चीज़ को देखता है। जी बिल्कुल, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आपके लिए आयशा अख्तर ने आज की ये महफिल इसलिए भी ऑर्गेनाइज़ की है कि कुछ अब जो तलख हकीकतें हैं मुआशरे की वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। तो इससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए माइंड हमारा। आयशा अख्तर ने आज की ये महफिल इसलिए भी ऑर्गेनाइज़ की है कि कुछ अब जो तलख हकीकतें हैं मुआशरे की वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। तो इससे पहले मैंने सोचा कि

खूब है वो हस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस नाचीज को इस जगह पर बैठकर इनके कलाम से फैज याब होने का मौका मिल रहा है। आइए सुनते इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मोमिनीन फैज पाने के साथ साथ अपनी रूह को जगमगाते हैं। आइए रोशनियों का ये सफर आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने अंदर उतारें, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे आप।

जी निहायत काबले एहतराम मेरे सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इंतहाई ऑनरेबल मेरे लिए आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ हैं जितने भी, और इस वक्त मुझे ज्वाइन जो किया हुआ है पाकिस्तान से एक ह्यूज फैमिली ने माशाल्लाह। मैं मेरी अपनी आप सब एक जस्ट लाइक जब हम रेडियो पे आ जाते हैं फैमिली की तरह होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक मिल रही है, अल्लाह का करम है। मैं और जिन मुअज़्ज़ज़ और ख़ूबसूरत हस्तियों के कलाम जो हैं पेश किए जा रहे हैं, मैं नाचीज़ अदना जो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, ये तो करम है मेरे अल्लाह पाक का कि उन हस्तियों की मोहब्बत मेरे आपके और जितने सुनने वाले और फीडबैक भेज रहे हैं इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसका बहुत अजर अजीम दे, हमारी मुश्किलात ख़त्म करे, हमारी आल औलाद की मुश्किलात ख़त्म करे। अल्लाह ताला हमें रोशनियों की तरफ लेके जाए। ये रोशन जो ज़मीर हस्तियाँ जिनके मैं कलाम पेश कर रही हूँ, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी रूह तक कांप रही है। मैं काबिल नहीं, नहीं है मैं करम दे काबिल साइयाँ, ये तुसी सारा करम कमाया, ये सारा तुहाडा दित्ता होया करम फैज़ रब्बे करीम उन हस्तियों से जो तूने दे दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सब, और जो फीडबैक पाकिस्तान से इतनी अच्छी भेज रहे हैं और दुनिया के कोने कोने से, खुदा आप सबको सलामत रखे, हमें हमारी आल औलाद को सलामत रखे। अल्लाह मुश्किलों से निजात दे, परेशानियों से निजात दे, तकलीफों बलाओं आजमाइशों से अल्लाह ताला बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, प्रोफेशन रेडियो 14:13 AM पर आशा तरीक नाचीज़, बहुत अल्लाह ताला की एक आजिज़ सी मस्कीन सी बंदी जो इस वक्त महफिल सजा के बैठी, आपने इसका खैर मकदम किया। आप सब मुस्तहिक है इस एजाज़ के जो आप मुझे दे रहे, मैं ये रिटर्न आप सबको ये देती हूँ। और अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र कि ये हस्तियों से हमें फैज़ याब होने का अल्लाह ताला मौका दे रहा है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मेरी आंखें नमी में आ जाती मेरी आंखों में कि ये जो इतनी काविशें कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह देखना इनको और कितना देता है। इंशाल्लाह ताला सबका ख्याल रखते हैं। ब्रॉडफेडरेशन रेडियो 14:13 AM वालों जिंदाबाद, जीते रहो तुम भी, हम सब भी, आप मुझे सामीन इकराम, आप और मैं भी, इतना तो हक बनता है ना तारीफ का, इतना तो हक बनता है ना भाई। जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। ज़्यादा तवालत नहीं दूंगी अपनी बात को, क्योंकि कलाम इस वक्त जो मैंने होल्ड ऑन किया हुआ है ये हर दिल की धड़कन है और मोमिनीन आशकीन के लिए ये एक ऐसा कलाम है और जो आपको रूहानी सुकून और तस्कीन देगा तो ये उनका कमाल है, मेरा तो कोई कमाल ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रब्बे करीम ने मुझे ये पाकीज़ा महफिल सजाने का मौका दिया। बहुत ही एक खूबसूरत सा टॉपिक तो है लेकिन एक रूहानी सा एक ऐसा मंजर बन चुका है, माहौल बन चुका है। मैं समझती हूँ कि आप सब इससे मुस्तफीज हो, और आइए ये रूह में उतारते हैं ये कलाम, और उसके बाद एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आना है जो रियलिटी पर, हकीकत पर मबनी है और उसकी हम सबको बहुत ज़रूरी है एक छोटी सी डिटेल सुनने की और उस हकीकत को जानने की कि जो खुदा न खास्ता मुआशरती नासूर ना बने और खुदा न खास्ता कि आगे जाके हमारी जो जेनरेशन या हमारी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा मसला क्रिएट ना करे। स्पेशली फीमेल के हवाले से बहुत वो दिलचस्पी भी है उसमें और एक हमारे लिए बहुत ही वक्त का तकाजा है, उस पर गुफ्तगू होगी। आइए एक बहुत ही खूबसूरत सा एक और कलाम सुनते, मन तो बहुत चाह रहा है ना, माहौल बन गया, चले एक खूबसूरत सा कलाम और सुनते हैं।

0: Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3489, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
5: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
4: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
5: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
4: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
5: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
6: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
5: जब चाहे कॉल मिलाएं
4: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
5: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: जी बिल्कुल सामान्य निकला ऐसा ही है. Bradford Asian Radio, 1413 AM. आपका मनपसंद रेडियो. हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677. वंस अगेन हम शाम जी जो पाकिस्तान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनकी बेहतरीन फीडबैक खूबसूरत उनके अल्फाज उनका शुक्रिया और जितने भी हमारे मजद सामीन इकराम जो हमारा प्रोग्राम जिन्होंने बड़ी दिलजमई से मुनहमिक हो के हमारा प्रोग्राम भी सुना और हमें उनकी खामोश तबीयत और उनकी महफिल में इतनी जो है खामोशी क्योंकि مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاموشی جو ہے جب میں ان سے ملوں گی وہ حصار ضرور توڑتی ہے. کہیں بھی جاؤں کہاں جہاں سم ٹائمز کچھ ایسا موڈ ہوتا ہے لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ مجھے تسکین دے جاتی ہیں اور پھر وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بتاتے ہیں آپ سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری گفتگو کس موڑ پر کیسے کٹی کیسے رہی. آپ کا بہت شکریہ جی. ہماری ویب سائٹ brafordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. ایک پروگرام کی نسبت سے ہی ایک بات اور کہوں گی کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہوتا ہے ہماری ریڈیو ٹیم اور جو ان کے ماشاءاللہ ریڈیو ٹیم کے ہمارے جو آرگنائزر ہیں الحمدللہ وہ سارا آرگنائز اور ان کی آرگنائزیشن جو اتنی ویل ڈسپلنڈ اور ہمیں اتنا پرسکون سا ماحول دیتے ہیں کہ جس میں واقعی میں آنیسٹلی اسپیکنگ خود بھی انجوائے کرتی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ سب کا بھی جو انجوائمنٹ ہوتا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس چیز کا. اور آج کا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں کہ بہت حد تک کچھ ایسی ٹینشنز بھی ہوتی ہیں انسائڈ ہوتی ہیں ہڈن ہوتی ہیں مینٹل لیول پہ کہہ رہے ہیں مینٹلی فزیکلی لیکن ہاں. اور آج کا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں کہ بہت حد تک کچھ ایسی ٹینشنز بھی ہوتی ہیں انسائڈ ہوتی ہیں ہڈن ہوتی ہیں مینٹل

को इस एंगल से देखते हैं, लेते हैं। यही मकसद होता है कि हम एक पुरवकार माहौल में, पुरफिजा जिसे माहौल कहते हैं, उसमें बैठ के हम सोच विचार जिसे कहते हैं वो करने के साथ साथ कोई एक ऐसा दिन रख लें कि जिसमें, अब देखें हमेशा आपको पता है कि हमारा म्यूज़िक जो है किस नहज पे चलता है, लेकिन आज उम्मीद करती हूँ कि कुछ पैसे भी स्पॉन्सर्स ने भी कुछ फरमाइशें थी, कुछ सबकी ये एक इच्छा जिसे कहते, एक उनकी तमन्ना भी थी, बहुत देर से उनसे प्रॉमिस किया हुआ था इस महफिल का कि ज़रूर एक दिन ज़रूर करेंगे, तो जी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। ऐसी ऐसी लिरिक्स मेरे सामने, अभी ये जो कलाम इतना मैं जैसे स्ट्रांग कह रही हूँ, आप तो ब्रेक पे गए तो मैंने सुना है, तो यूँ लगता है कि जैसे जैसे हमने पता नहीं ज़िंदगी कहाँ गुजारी हो। जो हकीकतें हैं, जो हमारे रब के लिए ये सूफ़ी हस्तियां हैं, ये बाबा बुल्ले शाह का कलाम और ये जो फरीद गुलाम फरीद का कलाम है, बाबा गुलाम फरीद का, और कैसे कैसे एक ऐसा कलाम है कि मैं सोचती हूँ हमने ये अल्फाज क्यों नहीं सारी ज़िंदगी सुने। हमारी रूह को तो इसीलिए बेचैनी और हमारी तमाज़त जिसे कहते हैं ज़हनी सुकून, वो तो शायद इन इसी में पिनहा है। अच्छा, एक आपको पतेगी और एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि बचपन में जब यही कलाम मैं सुनती थी खुदाया, मैं इतना इससे भागती थी, आप यकीन करें, नौखेजी की उम्र कह लें, और मैं चलती थी, मैं कहती बहुत शकील है ये, बहुत शकील है। लेकिन वक्त जो है ना, एक बहुत बड़ा उस्ताद है, इंसान को ऐसे ऐसे सबक पढ़ा देता है ना कि हमारी यही रूहानी हस्तियां जो है ना हमारे लिए ये कलाम छोड़ के गई हैं, फिर इनकी वक़्त और वैल्यू पता चलता है। और आज जैसे मैंने मुनहमिक होके ख़ुद भी ये कलाम सुना तो मुझे यूं महसूस हुआ कि शायद मेरी रूह को यही तलाश थी, शायद मैं इसी की प्यासी और मुतलाशी थी। तो यकीनन आप भी ऐसे ही करते होंगे। आज की महफिल और अल्लाह करीम का शुक्र, और वंस अगेन अपनी रेडियो टीम का, और वंस अगेन आप सबका शुक्रिया कि आपने इतने इन हमाक से ये प्रोग्राम समाप्त फरमाया। और फिर एक दफ़ा, क्योंकि अभी बस महफिल जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल से गुज़र रही है, तो इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर वो हस्ती के, अगर उससे प्यार किया है उस हस्ती से तो वो कलाम मुझे मिल गया, तो फिर ज़माने से डरना क्यों? डर कैसा ज़माने का, अगर इस हस्ती से हमने प्यार कर लिया। मैंने नाम जिसे कहते हैं ना, खुद से ही छुपा लिया कि आप खुद जब ये कलाम सुनेंगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ अगर हमने इनसे प्यार कर लिया, क्यों जमाने वाले हमारे दुश्मन हो रहे हैं। समझ जाएंगे आप भी ये कलाम सुन के, समझ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम है जी हमारे पास।

जी बिल्कुल मज़े सामीन इकराम, इख्तितामी मराहल भी खूबसूरत बनाएं और इस कलाम की गहराई में खो के सुनेंगे ना, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत लुत्फ आएगा, आप रियली महजूज होंगे इनकी इस कलाम की लिरिक्स से और इस कलाम की डेप्थ से, ज़रूर आप महजूज होंगे। आइए सुनते हैं ज़रा।

जी मज़े सामीन इकराम, ब्रॉडकास्ट स्टेशन रेडियो 1413 AM पर इस वक्त ये इतनी खूबसूरत सी महफिल कह लें, इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतनी खूबसूरत क्या कह लें कि यहाँ पे एक आसूदगी की जो फिज़ा इस वक्त छाई हुई है, आप यकीन करें कि जो इन कैफियात की अहमियत को पहचानते हैं ना, वही इसकी कदर व मंजिलत जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। घड़ी हमें बता रही है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। तो एक मेहदी का क्या नहीं आपको बताया कि फेवरेट भी है और मेरा ख्याल आप सबकी फेवरेट है। बहुत ही चलें थोड़े से इसके बोल सुनते हैं, इसके ये खूबसूरत से कलाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए सुनते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी।

0: जी बिल्कुल मज़ा सामीन इकराम, तिशनगी बाकी और ये कलाम जो है वाकई ज़बरदस्त ज़बरदस्त एवरी थिंग अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आप खुद भी देख रहे हैं क्या हाल है, दिल नहीं चाह रहा मेरा खुद भी प्रोग्राम को ख़त्म करने का, लेकिन एडवर्ट सुधर मेरा वेट कर रही हैं। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से फ्राइडे इंशाल्लाह ताला और बहुत से खूबसूरत पैकेजेस लेके आपके लिए आशा अख्तर शहजादी बतूल हाज़िर होंगी। जी बिल्कुल, आप सब के लिए मेरी दुआएं हैं और मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं और हमारी आल औलाद को, हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अकाउंट और मोबाइल वॉलेट, वेस्टर्न यूनियन मेक्स मनी फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, एडिशनल थर्ड पार्टी चार्जेस में अप्लाई। वेस्टर्न यूनियन पेमेंट सर्विसेज जीबी लिमिटेड, अ यूके कंपनी ऑथराइज्ड बाय द यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। सोचता हूँ जिंदगी में खोया क्या और क्या मिला।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
9: UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाप जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

टेम्परेचर अभी जब मैं प्रोग्राम करने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था तो टेम्परेचर 12 सेल्सियस था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक टेम्परेचर जो है वो 16 सेल्सियस तक जाने का इम्कान है। गज़ल उसने छेरी का आगाज़ उसके नाम नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी दुख किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

गजल उसने छेड़ी का हज़्ब रिवायत एक हसीन गीत के तोहफे से आगाज होगा। गो मेहमानान ग्रामी तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ हम उस हसीन गीत के तोहफे के बाद कराया करते हैं जिसे हम नज़्र किया करते हैं अपने उन तमाम मेहमानों के नाम, सामईन और नाजरीन के नाम, और अपने उन नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों के नाम कि जो दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम सुनकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत तौकीर बढ़ाते हैं। तो आगाज़ करेंगे गज़ल उसने छेड़ी का एक हसीन गीत से। आज आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार का नगमा मुंतखब किया है नॉर्थ हॉल लंदन से जनाबे शहयार साहब और उनके अहले खाना ने। तो आगाज करें, अभी तो बड़ी अच्छी धूप निकल रही थी, अब ख़त्म हो गई, यह सिलसिला जारी रहेगा सारा दिन। चलिए चलते हैं और उस गीत से आगाज़ करते हैं जिसे हमने आपकी मोहब्बतों और चाहतों के नाम पेश करने का फैसला किया है।

दोस्तों, यह हसीन तोहफा था हमारे उन मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले और प्यार करने वाले अहबाब के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है। आइए अब अपने मेहमानों से आपका तारुफ हो जाए। तशरीफ लाए हैं वक़ार साहब, आप वेकफील्ड से हमारे हमराह मौजूद हैं। रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से और खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से हमारे हमराह मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाबे मजीद परदेसी साहब। दोस्तों, इन तमाम अहबाब जिनके मैंने अस्माए ग्रामी लिए हैं, इन्होंने आप सब तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज़ सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। परदेसी मजीद साहब का जरा पैगाम थोड़ा सा तवील होता है, वो हम आपको सुना देते हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, प्यार और दुआएं। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। क्या खूबसूरत दुआएं हैं तमाम सामईन और नाज़रीन के लिए हमने आपकी जानिब से परदेसी मजीद साहब पहुंचा दी हैं। और अब हम आगाज़ प्रोग्राम में उस हसीन तोहफे के बाद जो हम आपकी नज़र करना चाहते थे, खुश आमदीद कहना चाहेंगे अपने सोते मुजाहिदों को जो एक कसीर तादाद में हमारे हमराह मौजूद हैं और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त गज़ल उसने छेड़ी सुनकर मुस्तफीज हो रहे हैं। हम आपके लिए चल रहे हैं वेकफील्ड। अभी हमारी जब बात हुई, वक़ार मियाँ जो हैं वो लंडनो वेल्स जा रहे हैं, आज उनकी मीटिंग वहाँ पर है और कहते हैं कि मैं चाहता था कि जाने से पहले अपने अहल खाना के हमरा अपना तोहफा वसूल कर लूँ। सर आँखों पर, हम तो कभी मना करते ही नहीं हैं, आप लोगों की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए ही तो ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी वक़ार। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। परदेसी मजीद साहब, मैंने आपका गीत अभी नोट तो नहीं किया, अभी नोट कर लेता हूँ, ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। चलते हैं वेकफील्ड और ढेरों दुआओं के साए में रुख्सत करते हैं वक़ार मियाँ को।

0: Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 डेज 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइट रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229627222
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी मैं हूँ रिफत अब्बास आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी हमारे प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की है हस्ब वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं खारियां गुजरात पाकिस्तान जहाँ परदेसी मजीद साहब मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने आज एक आलम लोहार का गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो हम उनकी नज़र करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इनका मज़ार लाला मूसा में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लाला मूसा से मैं गुजरा था और मुझे याद है कि किसी ने बताया था कि इनका मज़ार यहीं पर है। कहते हैं कि ये मेरे बचपन का सॉन्ग है, ज़रूर आज इसे हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। हम तो कर रहे हैं, आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा फ़नकार था आलम लोहार, जिसने दुनिया के चार कोनों में अपनी लोक मौसीकी फोक सिंगिंग से पाकिस्तान का झंडा लहराया। और उनकी शख्सियत भी औरों से मुख्तलिफ थी, देख के लगता था कि कोई पंजाब का शेर दहाड़ रहा है या कोई पंजाब की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद है। आइए वो गीत सुनते हैं जिससे आपकी बचपन की हसीन यादें वाविस्ता हैं। आमद का बहुत शुक्रिया परदेसी मजीद, जीते रहिए। सात समंदर पार से तशरीफ़ लाकर आप हमारे प्रोग्राम की इज्जत व तौकीर बढ़ाते हैं।

0: किन्ना गिरजा च फस गए, मौके ही बजना शुरू हो गए।
1: एक्सक्यूज मी,
0: एक्सक्यूज एक्सक्यूज ही सही भाई। हिंद सिंध बल्कि यूरोप मशहूर ने।
2: बेशक बेशक
0: साड़ी महफिल च आए ने, साड़ी खुशनसीबी, तशरीफ लाओ।
2: आ जाना वा के अपने ख्याल का इजहार कर। बिस्मिल्लाह।
0: हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, मैंने खिदमत का मौका दिता है। मैं जनाब पहले तो इन्हों पुराना सेपी हाँ, पहले फाले चंडदा रहा, फिर मैं जनाब चिमटा बनाया, फिर मैं गाना शुरू कर दिता। मगर इतने आने च मैं बड़ी तकलीफ हुई है, जे फिर इन्हों मिलने वास्ते आया तो रब च आया, इधरों मोडा वजह एक्सक्यूज मी इधर दिता। मैं जनाब पहले तो इन्हों पुराना सेपी हाँ, पहले फाले चंडदा रहा, फिर मैं जनाब चिमटा बनाया, फिर मैं गाना शुरू कर दिता। मगर इतने आने च मैं बड़ी तकलीफ हुई है, जे फिर इन्हों मिलने वास्ते आया।

की महीन दिन साल की माजी और हाल की जुल फंद जाल की माया और लाल की कवाल सूरताल की अलाप की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी महिमाल हीर रंज

सौर आम पर चेरा गुल फाम खांग तापते आराम चार चटनी ते जा अज सुन दिया वाम मैं ते कहना शरे आम मेरा साब नु सलाम साब पानी का बुलबुला।

शहनाज बहुत दूर पहुंचा दिया तुम्हें हमने इस गीत के जरिए, जीती रहो। दोस्तों मैं घड़ी की जानिब देख रहा हूं जो इशारा कर रही है कि थोड़ी ही देर बाद कमर्शल की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको याद दिलाता चलूं आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन। गजल उसने छेड़ी प्रोग्राम आपकी समातों में रस घोल रहा है। इंशाल्लाह कमर्शल के वक्फे के बाद हम सेकंड लास्ट सेगमेंट, कल आखिरी सेगमेंट का ये तोहफा होगा, एक शायर एक गीत दो फनकार। जैसा कि मैंने आगाज प्रोग्राम में बताया था, आज का गीत मुंतखब किया है नॉर्थ हॉल लंदन से शहरयार साहब और उनके अहले खाना ने। बढ़ते हैं कमर्शल की जानिब। कमर्शल के बाद आपसे मुलाकात होगी और फिर आपका ये पसंदीदा सेगमेंट जो कल इख्तिताम पजीर हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं हम कोई नया सेगमेंट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर रहेंगे। बढ़ते हैं कमर्शल के वक्फे की जानिब। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाना चाहें, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 3066 77।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

और दोस्तों अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत और दो फनकार का। आज के गीत को मुंतखब किया है नॉर्थ हॉल्ट लंदन से जनाब शहरयार साहब और उनके अहले खाना ने। ये बात है 1981 की एक फिल्म आई आहिस्ता आहिस्ता, जो बहुत ज़्यादा मकबूल तो नहीं हुई लेकिन इसके गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इसके मरकजी किरदार थे शशि कपूर और नंदा। इस फिल्म में एक ऐसा गीत जिसने सुनने वालों के दिलों में घर कर लिया, जिसे तहरीर किया था निदा फाजली ने और मौसीकी से इसे संवारा था खयाम ने। गीत के बोल थे, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इसे दो मुख्तलिफ फनकारों ने इस तख्लीक को, जो निदा फाजली और खयाम की मौसीकी हो और भूपिंदर की सहर अंगेज आवाज हो, तो ये तो सयादशाह गीत बन गया। तो आज की हमारी फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता 1981 की, जिसके मरकजी किरदार अदा किए थे शशि कपूर और नंदा ने। गीत के बोल तहरीर किए निदा फाजली ने और मौसीकी से इसे संवारा खयाम ने। आइए पहले फनकार से मिलते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत एक फनकार। आज की फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता। मुंतखब किया है गीत शहरयार साहब ने लंदन से, और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 1981 की फिल्म है। इसके मरकजी किरदार में शशि कपूर और नंदा थे। गीत के बोल तहरीर किए हैं निदा फाजली ने, और मौसीकी से इसे संवारा है खयाम ने। और अब यही गीत आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में सुनते हैं, जो आज हमारे प्रोग्राम एक शायर एक गीत और दो फनकार का दूसरा फनकार है।

और दोस्तों आप सुन रहे थे एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे निदा फाजली, फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता, मौसीकी से इस खूबसूरत गीत को संवारा था खयाम ने, और हमारे दो फनकार थे जनाबे भूपिंदर और आशा भोसले जी। गीत को मुंतखब किया था नॉर्थ हॉल लंदन से जनाबे शहरयार साहब और उनके ऐज़ खाना से, जिनका मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। कल इस सेगमेंट का आखिरी तोहफा लेकर हाजिर रहूँगा और फिर उसके बाद हम आइंदा एक नए खूबसूरत और प्यारे सेगमेंट के साथ यादों के रंग गीतों के संग का आगाज करेंगे। नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं यादों के रंग गीतों के संग, जिसमें शाहकार नगमात आपकी नज़र किए जाएंगे जिन्होंने अपने दौर के मकबूल तरीन नगमात का शर्फ हासिल किया पहुंचने का। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। अभी अभी तशरीफ लाए हैं जनाबे अजहर साहब ब्रेडफोर्ड की इस हसीन वादी से हमारे ये खूबसूरत लिसनर, खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के दीवाने और शजाई तशरीफ ला चुके हैं लीड से भगत सिंह साहब, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इन दोनों अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और अब हम आपको लिए चल रहे हैं बंडले, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से मेहरबान लिसनर और कॉलर जनाबे शकील साहब, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गज़ल आवाज़ जगजीत सिंह की है। बेइंतहा खूबसूरत गज़लों का ये गायक आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, रेस्ट इन पीस जगजीत सिंह साहब। आप हमें जो तोहफा दे गए हैं गज़लों की सूरत में, वो बेइंतहा कीमती नायाब और अनमोल तोहफा है, और उसी में से आज हम ये खूबसूरत गज़ल जिसकी निशानदही की है हमारे शकील साहब ने, और मैं इस बात का एतराफ़ हवा के दोष पर कर लूँ कि ये गज़ल मैंने नहीं सुनी थी पहले, पढ़ी है मैंने अपने प्रोग्राम में भी पढ़ी है, लेकिन गज़ल की सूरत में बाकायदा सुरताल के साथ कभी नहीं सुनी। तो शकील भाई आपके साथ साथ मैं भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

वाह वाह वाह वाह शकील भाई, बहुत खूबसूरत इंतखाब था और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस गज़ल को मौसिकी से संवारा जगजीत सिंह साहब ने, और अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू ऐसा जगाया कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दो नए हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, उनका जिक्र खैर हो जाए। नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारे हमराह मौजूद हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह नज़ीर भाई का एक ही पैगाम है कि तमाम आपके सामईन नाज़रीन को अस्सलाम अलैकुम, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, और हमारा भी वही जवाब, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नज़ेबत से बचाए। जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से आप तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारे लिए बाइस तौक़ीर है।

दोस्तों वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, लेकिन उससे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे हमारे बहुत ही सादा दिलकश और खूबसूरत लिसनर ओल्डहम से मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब को, जिन्होंने मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है और एक खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो हम यकीनन शामिल प्रोग्राम करेंगे। कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम आपको ब्रेडफोर्ड की हसीन वादी में मौजूद हमारे खूबसूरत लिसनर अजहर साहब का तोहफा उनके हवाले करेंगे। उसके बाद हम आपको लीड्स लिए चलेंगे, भगत सिंह साहब तशरीफ ला चुके हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम और अजहर साहब का मैं आपकी नज़र कर चुका हूँ। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, मुलाकात होगी कमर्शियल के फौरन बाद।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे टेमो
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो के पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
9: safewayrider.co.uk
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: दोस्तों आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio, 1413 medium wave पर Yorkshire की ससीन वादी में. दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है जिसमें हमारे श्रोते मुजाहिद और नादीदा लिसनर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ा रहे हैं हम इंशाल्लाह उनका तोहफा भी उनकी नज़र करेंगे लेकिन हस्ब वादा अब हम ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से अपने खूबसूरत लिसनर अजहर साहब का तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं और हाँ एक खूबसूरत शेर भी उनकी नज़र कर रहे हैं कि गुंचों से प्यार करके ये इज्जत मिली हमें गुंचों से प्यार करके ये इज्जत ملی ہمیں چومے قدم بہار نے، غنچوں سے پیار کر کے یہ عزت ملی ہمیں چومے قدم بہار نے، گزرے جدھر سے ہم۔ بے انتہا شکریہ احمد قادر، آپ کے پسندیدہ گلوکار خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں یہ شاہکار گیت آپ کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام۔

दोस्तों ओल्डहम चलेंगे, यहाँ लीज पे कुछ रोड वर्क्स हो रहा है तो मुझे ओल्डहम जाते जाते थोड़ी सी देर लगेगी। ओल्डहम हम चलेंगे इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। अभी तो हम चल रहे हैं यॉर्कशायर की सचिन वादी से हमारी मोहतरम डॉक्टर माहरुख साहिबा, जो तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तकीर में इजाफा करती हैं और लंच ब्रेक में अपना वो तोहफा वसूल किया करती हैं। और इस वक्त वो लंच ब्रेक पर हैं तो हम उनका तोहफा उनकी नज़र कर देते हैं। और इस खूबसूरत गज़ल के अशआर उन्होंने अदब के शहदाइयों और गज़ल के मतवालों के नाम किए हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। चंद शेर हैं सिर्फ कि चुप के आलम में वो तस्वीर सी सूरत उसकी, बोलती है तो बदल जाती है रंगत उसकी, सीढ़ियाँ चढ़ते अचानक वो मिली थी मुझको, इसकी आवाज़ में मौजूद थी हैरत उसकी, हाथ छू लो तो लरस जाती है पत्ते की तरह, वही नाकर्दा गुनाही पे नदामत उसकी। ये खूबसूरत अशआर अशफाक अहमद साहब के हैं कि बेतलब जीना भी शहजाद तलब है उसकी, जिंदा रहने की तमन्ना भी शरारत उसकी। और हम चलते हैं डॉक्टर साहब का तोहफा उनकी नज़र करते हैं, फिर कमर्शियल का वक्फा हम तक आन पहुँचेगा और उसके फौरन बाद हम चलेंगे ओल्डहम, जहाँ हमारे मोहतरम मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब अपनी पसंद का गीत सुनने के मुंतजर हैं। तो चलते हैं, पहले हम यॉर्कशायर की ससीन वादी में अपनी उन मेहमान की जानिब के जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और जो बावजूद अपनी मसरूफियात के तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाती है। डॉक्टर माहरुख साहिबा, आपका तोहफा आपकी नजर है, कबूल कीजिए।

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। परदेसी मजीद साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि यूके आपके पास ही है क्या? जी हाँ, मेरी जेब में रहता है, हर वक्त यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। और टाइम क्या है यहाँ पर? इस वक्त शाम के 4 बजे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको लेकर ओल्डहम, जहाँ मोहम्मद अयूब चौहान साहब मौजूद हैं, और इसके बाद हम चलेंगे लैया, गुजरात, पाकिस्तान, और फिर हमने एक बेइंतहा खूबसूरत गीत अपने नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों के लिए मंतखब किया है, जो हम उनके नाम करेंगे, जो इस वक्त हमें दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुन रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं ओल्डम और पेश करते हैं हमारे मोहतरम अय्यूब चौहान साहब का तोहफा, उनकी नजर।

0: और दोस्तों ये थी पसंद हमारे मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब की, जो हमेशा बेइंतहा खूबसूरत और अनमोल गीत पसंद करते हैं। अब हम चल रहे हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, जहां सात समंदर पार से हमारे बहुत ही मोहतरम लिस्टर नज़ीर अहमद साहब तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत व तौकीर बढ़ाते हैं। आपके लिए तोहफा लेकर हाजिर हूँ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। इसके बाद जो तोहफा है वो है हमारे नादीदा लिसनर्स के लिए, उन सोते मुजाहिदों के लिए जो हमारे हमराह ऑनलाइन दुनिया के चार कोनों में मौजूद हैं और गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत व तौकीर बढ़ा रहे हैं। चलते हैं पहले लैया पंजाब, नज़ीर अहमद साहब तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।
1: मैं दिल

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिलसब्रा, जहां तोहफा पहुंच रहा है हमारी बारिश खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमेरा का ब्रैडफोर्ड 3 से। सुमेरा, अल्लाह की और आपकी तमाम कजन्स की इस अंडरस्टैंडिंग को यूं ही कायम दायम रखे और नजर बद से बचाए। जीती रहो, ढेरों दुआएं, आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया।

कहना चाहेंगे। डनकास्टर सिटी से सिराज मुनीर साहब तशरीफ ला चुके हैं हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए, और मोहब्बत भरा सलाम आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में उन्होंने पेश किया है। इंशाल्लाह इसके बाद उनका तोहफा आपकी नज़र करेंगे। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ हुमायूं परवेज साहब का कि आपने तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और नज़रें बद से बचाए।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज
11: .uk। Bradford Asian Radio on 1413.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane, Bradford BD95ER 01274914442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, Bradford
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 Rooley Avenue ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रैडफोर्ड 9627229627
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है। आ सको तो आ जाओ कि मेरे साथ ये फिजाएं भी सदियों से तुम्हारे इंतजार में हैं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
10: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला
0: क्वालिटी में सबसे आला ऑन 1413

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 078.

करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर, जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशागाह आलम से गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश पर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशागाह आलम से गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो, जिसे तुम वक्त कहते हो, धुंधलका सा कोई जैसे जमीन से आसमां तक है, ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहां तक है। करो जो बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में आप हमारी नशात डिजिटल साउंड में, लिस्टर क्लियर साउंड में सुन सकते हैं। और हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं हमारे लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त CV FM मिड्सब्रा से भी पेश की जा रही हैं, और यही नशात इस वक्त आप TikTok पे भी सुन सकते हैं। और जितने भी TikTok पे हमें इस वक्त आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को भी खुश आमदेद। जी हमारा ये प्रोग्राम आप हफ्ते में दो बार आपसे मुलाकात होती है TikTok के जरिए भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आप सभी जानते हैं स्टूडियो का फोन नंबर आपका मुंसिर 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 है स्टूडियो का फोन नंबर। और कोई गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो, तो जरूर बताइएगा, दिल में ना रखिएगा, क्योंकि दिल के हाल या आप जानते हैं या फिर ऊपर वाला। जब आप कॉल करके हमें बताते हैं, फरमाइश हम तक भेजते हैं, तो जरूर आज के इस प्रोग्राम का उसे हम हिस्सा बनाएंगे। स्टूडियो का नंबर आप सभी को बताते चले, 01274306677 ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है, 01274 स्टूडियो का फोन नंबर है 306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए कोई फरमाइश भेजना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप भी आपके लिए हाजिर है, 00447 800 599 563। आइएगा, तशरीफ लाइएगा, बताइएगा हाल अहवाल, किस हाल में हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप। और जहां तक मौसम की बात है, मौसम तेजी से बदलता जा रहा है। आइए, तो इससे पहले कि हमारी बातें बहुत तवील हो जाएं और आप साथी बोर होना शुरू हो जाएं, आप सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं हम, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, आज से एक और दीवाना हमारा हो गया।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, मिलते जुलते हसीं वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। फिल्म का नाम था जुनून। जुनून का भी एक अपना ही कानून होता है। शायरी थी समीर की, मौसीकी थी आनंद मिलन की, आवाज थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। सामिन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहें तो भी आप वहां भी हमारी नशात सुन सकते हैं, www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और इस वक्त आप हमें टिकटॉक पे भी मुलाजा फरमा रहे हैं। और अब एक और गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मकसूद आबिद साहब वेलकम, खुश हमदेद दरवेश को भी खुश हमदेद। और अब यूं करते हैं कि अगली ब्रेक ज़्यादा दूर नहीं है, उस ब्रेक से पहले हम एक गीत आप सुनने वालों को और सुनाएंगे, जब शाम डले। अजी ये खूबसूरत गीत है, उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों को पसंद आएगा।

0: DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford PD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229627
12: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये निशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये निशात आप डेब रेडियो पे भी सुनते हैं। जी हां, डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी पेश की जा रही हैं, और राद्रम का जो डेप प्लस है उस पर भी ये नशात सुनी जा सकती हैं। और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदेद। कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं सलाम से पहले सलाम करता हूँ। इस वक्त किबला मोहतरम जनाब सफदर हमदानी साहब भी लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत टिक टाक पे जारी है और सारी है। लेकिन आप सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं, और इस गीत के बाद होती है आपसे मजीद मुलाकात। कोई गीत सुनना चाहें फरमाइश हो तो जरूर बताइएगा, स्टूडियो का नंबर मिलाइएगा 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आपके मेजबान हैं सैयद हसन।

और सामिन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और साथ साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी जनाब सफदर हमदानी साहब से। बहुत खूबसूरत हसीन यादें रेडियो की दुनिया की ताजा कर रहे थे। कुछ हमने अपनी यादें उनके साथ ताजा की, कुछ उन्होंने हमसे। और सामिन अगर आप इस वक्त हमें टिकटॉक पे लाइव देख रहे हैं तो इसे डबल टैप कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे दिगर दोस्त अहबाब हैं वो भी हमारी नशियात को देख सकें, सुन सकें, शेयर कर सकें।

और सामीन ने शायद आपने शेफील्ड से हमें याद किया, बेहद शुक्रिया आपका। और अगला गीत हम आपके नाम करेंगे, आपने इसकी फरमाइश की है। खूबसूरत गीत है, आवाज है किशोर कुमार और लता की, फिल्म का नाम है जांबाज। तेरा साथ है कितना प्यारा।

और जी हाँ सामीन, अब थोड़ी देर में हम चलेंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक गीत के चंद बोल सुनाते हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। थोड़ी देर में हम ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक के बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा, जरूर तशरीफ लाइएगा। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, व्हाट्सएप है 00447800599563।

0: is being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
7: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
4: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
4: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
4: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: और सामीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद करते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ गेन शायद आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ गेन शायद आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं। जी हम ब्रेडफोर्ड में आप DAB रेडियो पे भी हमारी नशात सुन सकते हैं, और यही नशात इस वक्त लिंक FM शेफील्ड से भी 96.7 FM पर पेश की जा रही हैं। और सामिन, अब हमारे बहुत ही रेगुलर और बहुत ही मोहतरम सुनने वाले जनाब शकील साहब मौजूद हैं, जिन्हें आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब शकील साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आवाज़ ठीक आ रही है।
0: जी जी, आपकी आवाज़ हमें बेहतरीन आ रही है।
1: तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुँचे।
1: वालेकुम सलाम, अली भाई हैं हमारे, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, सादिया बहन है, सनार साहब अगर सुन रहे हैं उनको भी आदाब, और भी जितने सुनने वाले हैं सबको मैं अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुँचे।
1: तो ये गजल है अख्तर आजाद लिखने वाले
0: हैं। अख्तर आजाद, जी जी, इनायत कीजिए।
1: अब हुस्न और इश्क के भी किस्से बदल गए हैं।
0: आहा,
1: मंजिल थी एक लेकिन रास्ते बदल गए हैं। किस पर यकीन कीजिए, ये दौरे मतलबी है, लगता है खून के भी रिश्ते बदल गए हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: आंखें बता रही हैं, जाहिर है दिल का हाल, वो बेवफा नहीं थे कितने बदल गए हैं। कहते हम जानते हैं फिर भी पहचानना है मुश्किल,
0: वाह वाह,
1: कुछ दोस्तों के चेहरे बदल गए हैं।
0: बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। उनको पता था शायद एक दिन लगेगी ठोकर, अच्छा है वक्त से वो पहले बदल गए।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
1: उनको पता था शायद एक दिन लगेगी ठोकर, अच्छा है वक्त से वो पहले बदल गए हैं। जब से मिली है दौलत आदाब भूल बैठे,
0: जब से मिली है दौलत आदाब भूल बैठे,
1: अब बातचीत के भी लहजे बदल गए हैं। है वक्त का तकाजा, चुपचाप घर में रहिए,
0: वाह वाह,
1: चाहत वफा मोहब्बत जज्बे बदल गए हैं।
0: बहुत खूब,
1: आखिरी शेर कहते हैं, मासूमियत कहीं पर गुम हो गई है अख्तर, मासूमियत कहीं पर गुम हो गई अक्सर, लगता है शहर जाके बच्चे बदल गए।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह,
1: शुक्रिया। तो एक छोटी सी गजल है, शकील इब्ने शर्फ का नाम है। वो कहते हैं, मिटे हैं जैसे हम एक शख्स की खुशी के लिए,
0: वाह वाह,
1: मिटे हैं जैसे हम एक शख्स की खुशी के लिए, मिटाना होगा कोई इस तरह किसी के लिए। कभी किसी के भरोसे पे जंग मत करना, कभी किसी के भरोसे पे जंग मत करना, कोई किसी से उलझता नहीं किसी के लिए।
0: क्या कहने, ये शेर फिर पढ़िएगा, वाह वाह।
1: कभी किसी के भरोसे पे जंग मत करना, कोई किसी से उलझता नहीं किसी के लिए। शुक्रिया। वो फैज उठाता रहा मेरी सादा लोही का, वो फैज उठाता रहा मेरी सादा लोही का, फ्रेब खाता रहा मैं खुद आगही के लिए। फिर कहते हैं, गुलों का खिल के बिखरना तो अमरे लाजिम है, गुलों का खिल के बिखरना तो अमरे लाजिम है, दुआएं मांग दिलों की शुगिफ्तगी के लिए। ये और बात, पतंगों को खाक होना पड़ा,
0: आहा,
1: चिराग हमने जलाए थे रोशनी के लिए।
0: बहुत खूब।
1: फिर उसके बाद तुम्हारा सुराग खो बैठा, फिर उसके बाद तुम्हारा सुराग खो बैठा, ठहर गया था मैं रस्ते में दो घड़ी के लिए। तो आखिरी शेर है, उलझ गए हैं खुद अपने ही मसलों में शकील, उलझ गए हैं खुद अपने ही मसलों में शकील, चुने गए थे हम औरों की राबरी के लिए।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह,
1: शुक्रिया। तो बहुत बहुत मेहरबानी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तशरीफ लाते रहिएगा।
1: थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और सामिन, अभी जनाब शकील साहब लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे, और अब यूं करते हैं कि अपने जो भी साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टिक टाक पे, इनकी तरफ बढ़ते हैं। पहले माइक का थोड़ा सा इत्माम कर लें हम।

0: और सामिन, अब यूं करते हैं कि टिकटॉक की जो हमारी महफिल है उनकी तरफ चलते हैं, जहां पे हीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हीर। अस्सलाम
1: जी,
0: वालेकुम
1: वालेकुम वालेकुम
0: जी,
1: अस्सलाम।
0: क्या हाल है? ठीक हैं आप?
1: और
0: खैरियत
1: सुनने
0: से हैं?
1: वालों को अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम। आप बताइए, आप कैसे
0: ए
1: हो?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, खैरियत है। आप सुनाइए, ठीक हैं, खैरियत से आप?
1: जी, अल्लाह
0: जी
1: का
0: जी
1: शुक्र। तमाम सुनने वालों को भी ईद की तरफ से प्यार भरा सलाम।
0: वालेकुम
1: और आज
0: अस्सलाम।
1: हमारे साथ बहुत ही प्यारी हस्ती आरिफ हैं, जो आपकी इजाजत से अगर आप
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: साथ
0: इनायत,
1: जुड़ना
0: आज पहली
1: चाहें।
0: बार इन्हें सुनने का
1: जी
0: इत्तफाक होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं
1: जी जरूर। आरिफ साहब, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना
2: जी,
1: तारुफ
2: अस्सलाम
1: फरमाइए।
2: वालेकुम, कैसे हैं आप?
0: वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम आरिफ साहब, खुश आमदेद कहते हैं। आज पहली बार आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के। खुश आमदेद
2: अरे
0: आपको।
2: थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं हीर? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे,
1: जजाकअल्लाह
2: और थैंक यू सो मच।
1: सर, हमें ऐसे ही खूबसूरत चेहरों की, आवाजों की जरूरत होती है, और ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए है। और एहसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हम लोगों को जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं और हमारी आवाज पूरी दुनिया में जो है वो पहुंचाते हैं।
2: थैंक यू
1: इनका
2: सो
1: दिल
2: मच।
1: से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
0: खुश आमदेद,
2: मैं
0: वेलकम।
2: अक्सर मजहब बुखारी जी के साथ बैठता हूँ और उनकी ब्रॉड के ऊपर भी, जो के मैनचेस्टर डीएम, मेरा ख्याल उनका
0: जी
2: है
0: जी
2: चैनल।
0: हमारे बहुत
2: जी
0: अच्छे
2: जी
0: दोस्त, हमारे साथी जनाबे मजहर बुखारी साहब। जी जी
2: सो ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, माशाल्लाह ग्रेट जर्नलिस्ट, और माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला जज़ा दे। और हमें बिठा लेते हैं कभी कभी
0: जी
2: साथ,
0: जी जी जी
2: सलामत रहें
0: जी
2: जी।
0: जी
2: आप चाहिए रखें, मैं
0: जी
2: सुन रहा
0: जी
2: हूँ आपको।
0: जी जी हीर,
1: और
0: पहले आप सुनाएंगी या पहले आरिफ
1: जी
0: साहब से हम सुनेंगे?
1: नहीं, मैं आरिफ साहब से कहूंगी
0: जी
1: यही
0: जी
1: पहले
0: आरिफ
1: सुनाएं।
0: साहब, आप
1: पहले
0: इब्तदा कीजिए।
2: चले, मैं दो इशार और उसके बाद एक अपनी गजल तो नहीं, लेकिन मुझे मुबारक सिद्दीकी को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है।
0: अच्छा लिखते हैं मुबारक
2: पहले,
0: जी।
2: हाँ, पहले दो इशार आपकी नजर
0: जी
2: के।
0: जी
3: फ्रांस और यूरोप भर में इंतहाई फसद
0: जी जी ये आवाज जिनकी है इन्हें म्यूट कर दीजिए प्लीज।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: अरे यूसुफ भाई, मेरे उस्ताद मोहतरम आ गए हैं यहाँ पे,
0: जी
2: सलाम
0: जी
2: करें यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैंने इनको शेयर किया था।
0: अच्छा,
1: वेलकम कहते
0: जी
1: हैं, खुश आमदीद कहते हैं यूसुफ साहब
2: यूसुफ
1: आपको।
2: भाई। यूसुफ भाई वो लोग हैं जिन्होंने तारिक अजीज के साथ काम किया,
0: क्या
2: पाकिस्तान
0: कहने,
2: टेलीविजन
0: बहुत
2: पे,
0: बड़े नाम।
2: पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम। यूसुफ भाई उन लोगों में से हैं, ठीक है। इनसे हमें बहुत
1: माशाल्लाह
2: कुछ सीखने का मौका मिलता है,
0: जी जी सर।
2: और इनको भी आप सुनेंगे, इनकी आवाज तो क्या कहने, हम तो कुछ
1: बहुत
2: भी नहीं है
1: शुक्रिया
2: क्या
1: यूसुफ
2: कहने।
1: साहब, आपकी तशरीफ आवरी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए।
4: बहुत शुक्रिया बेटा,
0: जी जी
4: बहुत शुक्रिया।
2: चलें यूसुफ भाई, मैं दो इशार और फिर एक मुबारक सिद्दीकी
0: जी
2: साहब
0: जी
2: का कलाम सुनना चाहूंगा इस रेडियो के ऊपर।
0: जी
2: सलामत
0: जी
2: रहें, यही इन्हें इनवाइट किया इस चैनल के ऊपर। के तेरे दलाल बजा है, लेकिन जहां पे लहजे खराब होंगे
0: आहा,
2: वहां मोहब्बत की मौत होगी, वहां पे रिश्ते खराब
0: खराब
2: होंगे।
0: होंगे, बहुत हो, बहुत हो।
2: तुम्हारा लहजा तुम्हारे मुंह पे मैं मार सकता हूँ यार, लेकिन
0: आहा,
2: मैं गंदे पानी पे पाँव डालूं तो अपने कपड़े खराब
0: क्या
2: होंगे।
0: कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: मुबारक मुबारक सिद्दीकी जी लिखता है कि ये दुनिया है, यहाँ पर दास्ताने मार देती हैं,
0: ये दुनिया है, यहां पे दास्ताने मार देती हैं,
2: यहाँ रस्मों और रिवाजों की चट्टाने
0: मार
2: मारी
0: देती
2: गई
0: हैं।
2: हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: यही परदेश में बैठे हुए एक दिन ख्याल आया, परंतों
0: हाँ,
2: को बहुत लंबी उड़ाने
0: मार
2: मार
0: देती
2: देती
0: हैं,
2: हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तेरी आंखों की मस्ती देखकर वाज की याद आई,
0: आहा,
2: वो कहता था शराबों की दुकानें
0: मार देती
2: पास ही
0: हैं,
2: खुली,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: कई गैरों के मीठे बोल सुनकर जान पड़ती है,
0: आहा,
2: कई अपनों की जहरीली जुबानें मार
0: मार
2: देती
0: देती
2: हैं।
0: हैं, बहुत खूब।
2: मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी, यहाँ रिश्ते निभाने की थकाने
0: मार
2: मार
0: देती
2: देती
0: हैं,
2: हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: सब बेटियों की नजर के यहाँ बेटे ही होते हैं, हकीकी प्यार के वारिस,
0: आहा, यहाँ बेटे ही
2: यहाँ
0: होते
2: बेटे
0: हैं हकीकी प्यार के वारिस, बहुत खूब।
2: यहाँ बेटे ही होते हैं हकीकी प्यार के वारिस। اگرچہ بیٹیاں خدمت میں جانے
0: مادھوتی کیا ہی خوبصورت شعر ہے, پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ واہ واہ.
2: بیٹے ہی ہوتے ہیں
0: حقیقی پیار کے وارث,
2: اگرچہ بیٹیاں خدمت میں جانے
0: مار دیتی ہیں. مجھے اس سے بشیر بدر کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ وہ خار ہے نہ پھول جہاں تتلیاں نہ ہوں, وہ خار ہے نہ پھول جہاں تتلیاں نہ ہوں, وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بچیاں نہ ہوں.
2: بچیاں نہ ہوں کیا کہنے. اس کا مکتہ مبارک نے لکھا
0: جی
2: ہے
0: جی.
2: کہ مبارک ایک تو موضوع تمہارے جان لیوا ہے.
0: ہاں ہاں
2: مبارک ایک تو موضوع
0: تمہارے جان لیوا ہے,
2: پھر اس پر درد سے لبریز تانے
0: مار دیتی ہیں. بہت خوب بہت
2: دنیا ہے یہاں پر داستانے
0: مار دیتی ہیں.
2: اگر اجازت ہے تو اپنی غزل سنا کے تو
0: عنایت کیجیے, عنایت کیجیے
2: کسی اور
0: جی.
2: کہ یہ جو دوستوں کے بارے میں لکھا تھا کہ وقت آنے پہ جو اوقات دکھا دیتے ہیں,
0: وقت آنے پہ جو اوقات دکھا دیتے ہیں, واہ واہ.
2: یا یار ایسے بھی ہیں یاروں کو دھگا دیتے ہیں.
0: بہت خوب بہت خوب.
2: ان کی مسکان پہ صدقے بھی دیے جائیں تو اپنے پیاروں کو عزیزوں کو رولا دیتے ہیں.
0: بہت خوب بہت خوب.
2: ہم پہ کوئی جوگر کر کے بھروسہ دیکھے, ہم وفاؤں کے عفظ جان لٹا دیتے ہیں.
0: کیا کہنے کیا کہنے. کہتے ہیں نا کہ میرے اخلاق سے وہ واقف تھا بہت, میرے اخلاق سے وہ واقف تھا بہت, میرا سر مانگ لیا بن کے سوالی اس نے.
2: ارے کیا کہنے کیا کہنے. روشنی جن پہ لٹاتے ہیں زمانے بھر کی, پھر وہی یار چراغوں کو بجھا دیتے ہیں.
0: بہت خوب بہت خوب.
2: بس زبانی پہ اگر یار اتر آئیں تو,
0: بس زبانی پہ اگر یار اتر آئیں تو
2: زخم تلوار سے بھی تیز لگا دیتے ہیں.
0: ہاں ہاں ہاں. کہتے ہیں نا کہ میں دشمنوں کے ستم حرف حرف لکھوں گا, میں دشمنوں کے ستم حرف حرف لکھوں گا, مگر وہ کیسے لکھوں دکھ جو بھائی دیتے ہیں.
2: ارے کیا کہنے کیا کہنے. حال دل جن کو سناتے ہیں سمجھ کر اپنا,
0: حال دل جن کو سناتے ہیں سمجھ کر اپنا,
2: اور بھروسے کی کڑی ہم کو سزا
0: سزا دیتے, دیتے ہیں. بہت
2: ایسے لوگوں سے تو عارف جی ہے دوری بہتر.
0: ہاں ہاں ایسے لوگوں سے تو عارف جی ہے دوری بہتر,
2: جو کہ یاری کے تقدس کو بھلا دیتے,
0: بھلا دیتے ہیں. بہت خوب عارف صاحب کیا کہنے, بڑی خوبصورت غزل آپ نے سنائی. سلامت رہیے, خوش رہیے, بہت شکریہ. جی ہیر
1: جی, خوبصورت کلام عارف صاحب ہمیشہ کی طرح جی. سلامت رہیے اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو ابھی آپ لوگوں کی اجازت سے میں کچھ
0: پڑھ جی, جی جی جی عنایت کیجیے.
1: کہتے ہیں کہ دنیائے غم کو زیر و زبر کر سکے تو کر, دنیائے غم کو زیر و زبر کر سکے تو کر, رحمت کی مجھ پہ ایک نظر
0: کر سکے تو کر. بہت اچھا ہے کیا کہنے بابا.
1: اے دل تو ایسی آہ اگر کر سکے
0: تو کر, بابا
1: اے دل تو ایسی آہ اگر کر سکے تو کر, دنیا ادھر کی آج ادھر کر سکے تو.
0: بہت خوب بہت خوب کیا کہنے.
1: اے آہ برق ریز تجھے روکتا کون ہے, اے آہ برق ریز تجھے روکتا ہے کون, اس بے خبر کو میری خبر کر سکے
0: کر سکے کر. واہ واہ بہت.
1: مشہور ہے کہ عشق کی راہیں ہیں
0: خوفناک,
1: مشہور ہے کہ عشق کی راہیں ہیں خوفناک, ہمت سے پہلے پوچھ سفر
0: کر سکے تو کر. کیا کہنے بہت خوب بہت خوب.
1: عارض ہے تیرے زلفیں بھی تیری کسی سے کیا, عارض ہے تیرے زلفیں بھی تیری کسی سے کیا, ایک جا پہ جمع شام و سحر
0: کر سکے تو کر. بہت خوب بہت خوب.
1: ناداں حدیث عشق کے معنی کچھ اور ہیں, ناداں حدیث عشق کے معنی
0: کچھ اور ہیں,
1: قابو میں دل کو اپنے
0: اگر کر سکے تو کر. خوبصورت دنیا ہے, واہ واہ بہت خوب بہت خوب.
1: اے آپ تو ہی حوصلہ اپنا نکال لے,
0: اے آہا تو ہی حوصلہ اپنا نکال لے,
1: اس سنگ دل کے دل پہ
0: اثر کر سکے تو کر. بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے. سنا بتائیے کیا کیسی غزل ہے ان کی. سنا سن رہی ہیں آپ میرے, اس وقت سنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.
1: جی جی जी, खुश आमदीद सना, शुक्र है आप आ गई हैं।
0: लेकिन आज इनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो दुआ कीजिए अल्लाह पाक ने सेहत दे।
5: मुझे नजर लग गई है लाइव पर
1: सदके।
0: ये तो होता है ना,
5: वो कहते थे जी, वो कहते थे कि बफुड़ेजा रेडियो को चार चांद लगा दिया इसने और वो मुझे नजर लग गई।
0: बस अल्लाह पाक आपको नजरे बात से बचाए।
1: आमीन आमीन सब आमीन। लास्ट को लाइन से कहते हैं कि आलिम जहां ने इश्क के दुश्वारियां ना पूछ, आलिम जहां ने इश्क की दुश्वारियां ना पूछ, दिल को जो राजदार जिगर कर सके
0: तो
1: कर।
0: बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया आपकी समाज,
0: बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह आज भी आपका इंतखाब बहुत अच्छा था, क्या कहें। जी जी, और हमारे पास चार मिनट से, अगर आपके साथ कुछ और साथी हैं तो आप ले लीजिए।
2: यूसुफ भाई को
1: जी, यूसुफ सर का हम खुश आमदीद कहते हैं। यूसुफ सर आप आ जाइए और कुछ सलाम आप।
0: मुझे इनके आने से पहले अगर एक शेर में सुना दूं तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें इनका नाम भी मौजूद है।
1: जी जी।
0: कि जचते भी तो क्या चश्मे खरीदार में ताहिर, जचते भी तो क्या चश्मे खरीदार में ताहिर, हम कौन से यूसुफ थे जो बाजार में आए।
1: अरे वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब जी।
0: जनाब खुश आमदीद,
4: बहुत शुक्रिया जी, इज्जत अफजाई का
0: खुश आमदीद, वेलकम।
4: एक नज़्म वैसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहां में नजर आ
0: गई। जी जी, इनायत कीजिए।
4: पहली दफा ही पढ़ने लगा हूं, इन शायरा का नाम शायर कर
0: लिया। जी जी,
4: एनी हाउ समातों की नजर
0: इनायत।
4: हाँ मेरे नज़्म के शायर, ये तेरी नज़्म भी अब हिजर की तमहीद कैसी है, वफा की बात पे लहजा तेरा पहलू बदलता है, तेरे चेहरे का रंगो ज़ियारी है, बस एक बिरहा की खारी है, जिसे सर पर उठाए है जो आंखों में समाई है, बहारों के रवैये दर्द के अनवान कहते हैं, कुस्से सुनाते हैं दीवान लिखते हैं, घटाएं बैन करती हैं तेरे अल्फाज रोते हैं, जो शीशे के खिलौने जैसे ख्वाबों के ये टुकड़े हैं, ये आंखों पे गिरा है और फिर ये लज्जत गिरिया से आ रही है, तेरे रास्ते में बस पड़ा हुए हैं, अंधेरे गार में और रोशनी मफकूद है जिनमें, ऐ मेरे नज़्म को शायर, कहानी जब तलक अंजाम से दो चार होती है, बहुत से फूल खिलते हैं, कई मौसम बदलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं,
0: बहुत खूब
4: मिलकर बिछड़ते हैं, समय का खेल है इसमें, बहाव चलता रहता है, पड़ाव चलता रहता है,
0: बहुत कम
4: किसी को एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती, यहाँ हर मोड़ पर एक सानिया आवाज देता है,
0: वाह वाह,
4: कभी जो ऐन मुमकिन था वही मुमकिन नहीं रहता, कहानी जब तलक अंजाम से दो चार होती है, बहुत से अनकहे अनदेखे मंजर रोक लेते हैं,
0: बहुत खूब
4: समय को बांध देते हैं, सोजलत में मैंने कोई फैसला करना, ऐ मेरे नज़्म को शायर, ऐ मेरे नज़्म को शायर,
0: बहुत खूब।
4: एक और एक गजल सी है, मैं मेरे ख्याल में चार मिनट दो मिनट तो मैं ले गया, दो
0: जी जी दो मिनट जाते हैं अगली ब्रेक को, तकरीबन डेढ़ मिनट रहता है, प्लीज सुनाइए।
4: शब जल रही है थम चुका तूफान शब आखिर,
0: बहुत खूब,
4: शब जल रही है थम चुका तूफान
0: शब आखिर,
4: अब सो गए हैं शहर के दरबान
0: शब आखिर, बहुत
4: शब आखिर, एक एक करके हो चुके रुखसत तमाम लोग, अब हो चुकी हैं महफिलें वीरान
0: शब आखिर, बहुत खूब,
4: कोई तो है कि जिसको गले से लगा कर हम आहिस्तगी से कह दें मेरी
0: जान शब बख़ैर, बहुत खूब,
2: मैं समलिया गले लिखा,
0: और मुझे इससे वो शेर याद आ रहा है ना कि हमें मालूम है कि हमें चरागे आखरे शब, हमें मालूम है कि हमें चरागे आखरे शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है,
4: उजाला, अच्छा मुसाफिरों को इजाजत दे आलीजा, लंबा सफर है राह भी सुनसान शब बखैर तारों की आंखें नींद से बोझल हुई हैं यार कोई नहीं किसी का भी इम्कान
0: शब बखैर बहुत हो
4: ऐसा ना हो कि फिर कहीं जाकर न पाए हम चलते हैं दोस्त अल्लाह निगेबान
0: शब बखैर
4: गुल कर रहा हूँ रोते हुए अब चराग शब ऐ मीसम तहिये दिलो दामान
0: शब खैर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और हम चलते हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात
6: This is Bradford Asian Radio.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
12: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
11: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
12: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
11: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
12: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
13: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
12: जब चाहे कॉल मिलाएं
11: 01274781168
13: मीरपुर ट्रेवल्स
14: मीरपुर नवे टेमो
11: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
12: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
11: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
12: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
11: फर्स्ट चॉइस
12: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
11: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
12: 01274317644
13: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
15: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
15: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
15: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
15: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
15: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो दुल्हन करे सिंगार
15: आज ही मामू काके की दुकान
12: खालिस सोने की पहचान
15: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
15: आपकी शान
12: हमारी आन
15: क्वालिटी की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
15: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
12: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
15: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
12: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
15: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
12: 33 वेटले लेन ब्रैडफोर्ड 01274201679
15: safewayrider.co.uk
16: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
16: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
6: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
0: और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंग महफिल में खुश आमदेद और यूं करते हैं कि अब हीर हमारे साथ टिकटॉक पे मौजूद हैं अगर आप भी तशरीफ लाना चाहें तो आप टिकटॉक पे भी ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं और यही नशियात इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो से 14:13 AM पर लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर तो अब चलते हैं और हीर से कुछ सुनते हैं कि वो आज क्या सुना रही हैं जी हीर
17: जी
0: جی جی وعلیکم السلام.
9: کہتے ہیں کہ نہ ہے اس کو مجھ سے غفلت نہ وہ ذمہ دار کم ہے. نہ ہے اس کو مجھ سے غفلت نہ وہ ذمہ دار کم ہے. یہ الگ ہے اس کی فطرت وہ وفاشار
0: کم ہے. بہت خوب.
9: میری حسرتیں مٹیں گی میرے خواب ہوں گے پورے. میری حسرتیں مٹیں گی میرے خواب ہوں گے پورے. مجھے اپنے اس یقین پر ذرا اعتبار کم ہے.
0: کم ہے. بہت خوب بہت خوب.
9: نہ بڑھائے اور دوری کوئی آنے والا موسم. نہ بڑھائے اور دوری
0: کوئی آنے والا موسم.
9: چلو چلو فاصلے مٹا لیں کہ ابھی دراز
0: کم ہے. بہت خوب بہت خوب.
9: یہ تم ہی پہ منحصر ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ.
0: یہ تم ہی پہ منحصر ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ.
9: کیا لاؤ میں بھلا یہ کیسے کہہ دوں مجھے انتظار
0: کم ہے. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے کیا کہنے.
9: یہی چاہتے تھے ہم بھی کہ ناراض دل آیا ہو. یہی چاہتے تھے ہم بھی کہ ناراض دل آیا ہو مگر اپنے آنسوؤں پہ ہمیں
0: اختیار کم ہے. بہت خوب بہت خوب.
9: وہ اٹھا تھا ایک طوفان جو مچا گیا تباہی. وہ اٹھا تھا ایک طوفان جو مچا گیا تباہی. ابھی آندھیاں تھمی ہیں تو ابھی غبار
0: کم ہے. بہت خوب.
9: لاسٹ لائن سے کہتے ہیں کہ کہیں کھو گئے تصور جو بکھر گیا. کہیں کھو گئے تصور جو بکھر گیا تو شفا یہ کیسے کہہ دے کہ وہ بے قرار
0: کم ہے. بہت اچھے خوبصورت تھا. واہ واہ کیا کہنے. جی جی
9: جی. ابھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اوٹر ڈاٹ کام اور ساتھ میں ہیں ہمیں جوائن کیا ہے
0: راجا مزر صاحب کو بھی ہم لائیو لے لیں گے. اگر یہ انویٹیشن بھیجیں تو انہیں بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ کنن ہمارے کولیگ ہیں.
9: جی جی
0: جی جی.
9: بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ڈاٹ کام.
0: جی جی آپ دیکھ لیجیے آپ جنہیں بھی ہم لائیو لیتی ہیں پہلے ان سے بات ہو جاتی.
9: جی
17: فاروق اقبال سر میرا نام ہے. ای-یوٹرز
9: ایجوکیشن.
0: اچھا فاروق اقبال صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں.
17: جی بہت شکریہ سر.
0: جی جی کیا سنائیں گے آج.
17: اچھا سر میں ایک شاعری ہے غزل میں وہ آپ کو سناؤں گا.
0: عنایت کیجیے.
17: بجا کے آنکھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں.
0: بجا کے آنکھ میں
17: نیندوں کے سلسلے
0: بھی نہیں.
17: شکستے خواب کے آب مجھ میں حوصلے بھی نہیں.
0: بہت خوب بہت خوب. اچھا ہے.
17: شکستے خواب کے اب مجھ میں حوصلے بھی نہیں. نہیں نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی.
0: پروین شاکر واہ واہ.
17: یہ خبر
0: دشمنوں نے دی ہوگی.
17: وہ آئے آ کے چلی بھی گئے ملے بھی نہیں.
0: ملے بھی نہیں. بہت خوب پروین شاکر کا خوبصورت کلام.
17: زبردست. یہ کون لوگ اندھیروں کی
0: بات کرتے ہیں.
17: یہ کون لوگ
0: اندھیروں کی بات کرتے ہیں. ابھی تو چاند تیری یاد کے ڈھلے بھی نہیں. کیا کہنے کیا کہنے.
17: کیا بات ہے پروین شاکر صاحب.
0: کیا کہنے.
17: ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے.
0: ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے.
17: رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے. ابھی تو چاک میرے زخم کے
0: سلے بھی نہیں. بہت خوب بہت خوب.
17: خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہمی ہے کہ ہم سے انہیں گلے بھی
0: نہیں. بہت خوب بہت خوب.
17: جی سر.
0: پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ
17: جی جی.
0: رنج ہوتا ہے بہت دل کو رویے سے تیرے. دکھ پہنچتا ہے بہت دل کو رویے سے تیرے. اور مداوا تیرے الفاظ نہیں کر سکتے.
17: واہ واہ ماشاءاللہ
0: جناب
17: زبردست.
0: کچھ اور بھی سنانا چاہیں تو ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے.
17: دسترس سے اپنی باہر ہو گئے. جب سے ہم ان کو میسر ہو گئے. یہ پروین شاکر صاحب کا شعر ہے.
0: جی جی
17: شاعری ہے یہ.
0: جی جی عنایت کیجیے.
17: دسترس سے اپنی باہر ہو گئے جب سے ہم ان کو
0: میسر ہو گئے.
17: ہم جو کہلائے طلوب مہتاب डूबते सूरज का मंजर हो गए,
0: मंजर हो गए, बहुत खूब।
17: शहर खुबान का यही दस्तूर है, मुड़ के देखा और पत्थर हो गए।
0: क्या कहने, लाजवाब है, वाह वाह।
17: बेवतन कहलाए अपने देश में, बेवतन कहलाए
0: अपने देश में, देश में
17: अपने घर में बेघर हो गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
17: सुख सुख तेरी मिरास थी तुझको मिले, दुख हमारे थे मुकद्दर हो गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
17: वो शराब उतरा रगों पे मैं कि हम,
0: वो
17: शराब उतरा
0: रगों पे मैं कि हम,
17: खुद फरेबी में हम समंदर हो गए।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छे।
17: तेरी खुद गर्जी से खुद को सोच कर, तेरी खुद गर्जी से
0: खुद को सोच कर
17: आज आज हम तेरे बराबर हो गए।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या करें
17: सर, आप मुनासिब समझे तो थोड़ा सा अगर मैं तारफ करवा दूं।
0: जी जी
17: सर, फारूक इकबाल जैसे मैंने आपको बताया था।
0: कहां से आप हमें जानकारी थे?
17: जी जी सर, ई-यूटर्स के नाम से हमारी एक ऑनलाइन एकेडमी है सर।
0: जी जी, आप कहाँ पे बेस्ड हैं, कहाँ से आप कॉल कर रहे
17: हैं? सर हम G103 इस्लामाबाद,
0: इस्लामाबाद में
17: रजिस्ट्रेशन है।
0: जी जी,
17: G103 इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है हमारे पास,
0: सही।
17: लेकिन फिजिकल ऑफिस जो है हमारा मीरपुर आजाद कश्मीर में है।
0: बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाते रहिएगा मोहतरम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जासिब साहब आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। जनाब क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? आप ये हमारे साथ ये लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त जासिब साहब? जी आप
9: मौजूद तो
0: है
9: लेकिन वो म्यूट
0: लगा के। अच्छा सही से, ये सना हमारे जो यहाँ से कोरेस्पोंडेंट हैं वो वाले हैं जासिब साहब, ये डिफरेंट है। रजासब मुगल साहब हैं या मुख्तलिफ हैं? ये एक तो हमारे यहाँ से लोकल जर्नलिस्ट हैं वो हैं या और हैं?
9: रासिब मोहम्मद हैं।
0: जी जी अच्छा, रासिब मोहम्मद, अच्छा ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अच्छा जी जी सही सही। या मैं उधर यूं करता हूँ कि अपने रेडियो के सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत सा गीत पेश करता हूँ और यहाँ लगाते हैं हम, ठीक है? और सभी अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी कॉल करना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। या मैं उधर यूं करता हूँ कि अपने रेडियो के सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत सा गीत पेश करता हूँ और यहाँ लगाते हैं हम, ठीक है? और सभी अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी कॉल करना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं।

0: और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी उदित नारायण की। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा, खूबसूरत गीत था। और टिकटॉक पे भी हमारी महफिल जारी हो सारी है, बहुत से साथी हमारे साथ उस पर मौजूद हैं, सना सेहत अच्छी ना होने के बावजूद भी हमारे साथ हैं। हम बहुत सी दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और सलामती दे। हीर हैं हमारे साथ, सुंदर हैं, और जनाब आरिफ साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो अब बारी आती है सुंदर, आप आइए और कुछ सुनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके?
0: वालेकुम सलाम, हम सभी खैरियत से, आप सुनाइए। मुझे वो जो खत वाला नहीं होता था, एक जमाने में खत लिखते थे और कहते थे कि आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं, तो बस
1: जी जी बस करें, मुझे वो लतीफा याद आ जाएगा।
0: कौन सा?
1: खैर ना करें, अभी मुझे सुनाने दे।
0: जी जी जी सुनाइए।
1: और शकील भाई और सब तमाम सुनने वाले को बहुत ही सलाम और बहुत सी दुआएं। और कहते हैं कि एतबार साजिद का कलाम
0: क्या
1: है,
0: कहने एतबार
1: साजिद कहते हैं कि ये हदें ना तोड़ देना, ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना।
0: हाँ, ये हदें ना तोड़ देना, क्या कहने,
1: ये हदें ना तोड़ देना, मेरे

0: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह, उस पे मैं वार बैठा हूँ, बहुत अच्छे, वाह वाह।
1: और मिलना दुश्वार है बहुत तुमसे, कि मिलना दुश्वार है बहुत
0: उनसे
1: तुमसे, मैं तो दरिया के पार बह।
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, फिर से पढ़िएगा ये शेर, वाह वाह, बहुत अच्छे।
1: दरिया
0: के पार
1: दुश्वार है बहुत तुमसे,
0: हाँ,
1: कि मिलना दुश्वार है बहुत तुमसे,
0: मैं तो दरिया
1: के पार बैठा हूँ।
0: और मोत्र मुझे इससे शेर याद आ गया जनाबे अदीम हाशमी का, कि हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई उस पार भी तन्हाई।
2: अरे क्या कहने, अजर आपका भी यार,
0: क्या कहने, बहुत खूब,
3: बहुत ही खूबसूरत अंदाजे पिया, बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत ही अच्छी आपने तरन्नुम में पेश किया कलाम,
3: बिल्कुल बहुत अच्छे। अभी हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉलर की तरफ, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। भट्टी इन्फो के नाम से उनकी आईडी है, अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर हमें ज्वाइन करें और अपना कलाम पेश करें।
0: जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम
0: सलाम। जी भट्टी साहब, खुश आमदीद।
4: तेरे चेहरे की तरह, तेरे
0: चेहरे की तरह
4: और मेरे सीने की तरह,
0: आहा,
4: मेरा हर शेर दमकता है
0: नगीने की तरह। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
4: तेरे चेहरे की तरह
0: और मेरे सीने की तरह,
4: सीने की तरह, मेरा हर
0: शेर दमकता है नगीने की तरह। अपनी शायरी की खूब किसी ने मियां मिठू बन के तारीफ की है, बहुत खूब।
4: फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानित,
0: हाँ हाँ,
4: फूल जागे हैं कहीं
0: तेरे बदन की मानित,
4: औस महकी है कहीं तेरे पसीने की,
0: पसीने की तरह, बहुत ही अच्छा है, वाह वाह।
4: ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले
0: दोस्त होता है,
4: ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले दोस्त होता है
0: समंदर
4: में, तुम में
0: सफीने की तरह। ये शेर तो बड़ा हमने पहले से सुन रखा था, लेकिन आज आपने पूरी गजल सुना दी, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये शेर। ऐ मुझे छोड़ के,
4: छोड़ के
0: तूफान में जाने वाले दोस्त,
4: छोड़ के
0: तूफान में जाने वाले दोस्त
4: होता है
0: तलातुम में सफीने की
4: तरह,
0: वाह वाह।
4: ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाले,
0: ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाले, आहा,
4: मैं तेरा राज छुपाता हूँ दफीने की,
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, वाह वाह।
4: तेरा वादा था, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, अब तो हर रोज गुजरता है
0: महीने की तरह, क्या कहने, ये सहले मुमतने गजल है, क्या कहने, हर शेर इसका एक नगीने से कम नहीं है। कौन शायर है इसके?
4: जी सॉरी, मैं ये शायर का नाम नहीं याद,
0: हम शायद आखिरी मुकम्मल कर चुके हैं या अभी कुछ रहता है इसमें,
4: कर चुका मुकम्मल, लेकिन शायर मुझे याद नहीं है।
0: इसका पहला शेर फिर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत था पहला शेर,
4: तेरे चेहरे की
0: मतलब
4: तेरे
0: चेहरे की तरह
4: और मेरे सीने की तरह,
0: आहा,
4: मेरा हर शेर दमकता है
0: नगीने की तरह। और ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले, ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह। आप सभी सुन रही हैं साथ जो है। जी जी
3: जी, बहुत हो, माशाल्लाह।
4: एक और है, चर्चे तेरे हुस्न के, चर्चे तेरे हुस्न के तो आम बहुत थे,
0: चर्चे तेरे हुस्न के तो आम बहुत थे,
4: तो आम बहुत थे, पर हम पे तो पहले ही इल्जाम
0: बहुत थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या कहने, खूबसूरत।
4: प्यास से जो ना लौट आते, प्यास से
0: जो ना लौट आते
4: तो और भला क्या करते, सुराही फकत ए थी और जाम बहुत
0: थे। बहुत थे, क्या कहने, बहुत
4: थे। मेरे पर्दा नशी, ऐ मेरे पर्दा नशी, तू जरा एहतियात ही रखना, ऐ मेरे पर्दा नशी, तू जरा एहतियात ही रखना, कि इस शहर में हुस्न का नीलाम बहुत
0: है। बहुत है, बहुत है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। पहली गजल भी बहुत ही खूबसूरत थी और दूसरी भी बहुत अच्छी। अगले प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाइएगा मोहतरम।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा अंदाजे प्यार बेटी साहब आपका।
0: वो थोड़ा सा टाइम है, अगर आपको ये
3: हम आगे अगले कॉलर की तरफ अगर आप
0: जी जी जी जी जी जी जरूर
3: प्ले करना चाहते हैं।
0: दो तीन मिनट
3: हमारे पास। और फैसल कोकर अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो जरूर।
0: जी जी, खुश आमदेद
5: जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया।
0: वेलकम, खुश आमदेद।
5: अभी एक शेर सुनाएंगे आप।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
5: देखा जो तीर खा के
0: कमींगा की तरफ,
5: कमींगा की तरफ।
0: आहा,
5: देखा जो तीर खा के
0: कमींगा की तरफ,
5: कमींगा की तरफ।
0: तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, क्या कहने। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। देखना है छोड़ता है मुझ पे पहला तीर कौन।
3: अरे वाह, क्या कह रहे हैं, फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया
3: जी। जी सर,
0: कोई एक आध कॉलर और लेती है तो ले लें।
3: मैं चेक करती हूँ, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है।
0: अच्छा, यूं करते हैं सुंदर से एक शेर सुन लेते हैं। सुंदर से एक शेर सुना सकती हैं आप?
6: जी जी, नहीं जी। मैं तो दो सुनाऊंगी।
0: चलिए दो ही सुना दीजिए।
6: मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं दो सुनाऊं।
3: मैं चाहूंगी कि आप बस... एक आप सुनाएं और एक आरिफ साहब सुनाएं।
6: नहीं आप तो मैं
0: अच्छा, एक हमने सना से भी सुनना है उनकी
6: सुनाने
0: है। एक सना से भी सुनना है अगर वो सुनाना चाहें तो।
3: जी जी,
0: सना आप सुनाना चाहेंगी एक शेर?
3: एक्चुअली फर्स्ट टाइम आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया ना।
0: जी जी,
3: तो मैं चाहूंगी कि एक सुंदर साहब सुना दे और एक आरिफ साहब।
0: नहीं, मैंने अभी सना से भी गुजारिश कर रखी है, एक उनसे सुनेंगे और फिर आगे चलेंगे।
3: डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया।
0: जी जी, सना कुछ
6: सना किधर है? सना किधर बैठी है?
0: सना कोने में बैठी है कमरे।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई।
3: मैं रह गई आज।
0: जी जी
3: सही। जी सना, ठीक है, फिर सना को देखते हैं। सना से शुरू करते हैं अगर वो सुनाना चाहे।
0: जी जी,
7: मैं क्या सुनाऊं आपको?
3: टाइम की मुनासिबत से देख लीजिए।
8: AM DAB Plus mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian.
0: और इस अमीन अभी इसी के साथ ही आज का रंग महफिल पहुंचता है अपने इख्तिताम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
14: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
15: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
15: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
14: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
13: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
14: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
13: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
14: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
16: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मूत्र रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत्र रिजवी।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
6: Sadabahar mosiki ke bhule bisre saaz.
13: Community ki pura asar awaaz.
6: Har waqt aapke sang, aapka dam saaz.
14: Bradford Asian Radio. Medium wave 1413 AM. Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: बाग में बाहर है? मैंने पूछा बाग में बाहर है?
3: है.
2: गर्मी से निहार है?
3: है.
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
7: टैक्सी लाइसेंस
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रैडफोर्ड 9627229627
10: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: नीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95VR 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.